103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 सितंबर 2026 सवेरे के ठीक 5:56 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

है फरहत नाज। अठारवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल है।

0: सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरुंडी के राष्ट्रपति एवेरेस्ते नादियनशिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। ये निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रूपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आई सुनते हैं वंदनवार चिंतन।
3: भारती वंदनवार।

जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 309। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 12। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। सुबह 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के, ये होगा युगल गीतों का कार्यक्रम। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30 और सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित होगा संगीतकार जय किशन पर, आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पुनः प्रसारण रात्रि 9:30। आज दिन में 11 बजे सुनिए चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो, पत्रकार लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत, संपादन सहायक प्रस्तुति जुबैर खान की। दिन में 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर तय कीजिए विविध भारती के साथ दिन में 1 बजे, जिसमें श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार दिन में 2:15 पर और सदाबहार नगमे 2:30 पर। मनचाहे गीतों को लेकर आज हमारे साथ आप सुनिए कार्यक्रम दिन में 3 बजे और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। नाट्य तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3:30 पर। आज आप सुनेंगे नाटक कल आना कल, एच तुंडीराज के कन्नड़ नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक HV रामचंद्र राव, निर्देशन निर्मला अग्रवाल। दोपहर बाद 4 बजे सुनिए पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3। आज आप सुनेंगे प्रस्तुति।

तेजश्री कामले। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत दी जाएगी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, शाम 7 बजे विशेष जयमाला, गीतकार हसरत जयपुरी, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा, हवा महल में सुनो कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी, कहानी का नाम पिंजर का भाग 2, वाचन ममता से, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की, कार्यक्रम का समय रात्रि 8 बजे, चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर और समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9 बजे और 10 बजे होगा छाया गीत, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे मैटिनी शो। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की और अब ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज सुनिए रामचरित मानस का भाग 309, लंका कांड।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, अपने को एक तपस्वी का दूध बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं, कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है मैं कुल नाशक हूं और तुम कुल रक्षक हो, ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्म पालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है कि तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग हैं मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आज 12वीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। मित्रों, इन दिनों जारी है श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, और किराना घराने की गायकी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, पिछली कड़ी में हम विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी की जो आवाज में मिठास है और जो कोमलता है उनके स्वरों में, उसकी बात हो रही थी। उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
2: आज मुझे लगता है किराना घराने की आवाज की जो मिठास रहती है, सुरों की कोमलता, ये दोनों चीजें हमारे घराने की एक पहचान है। किराना घराने में लय से अधिक,
1: जी
2: शुरू में मैंने बोला है, लय से अधिक स्वर की शुद्धता और सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
1: जी जी।
2: मधुर और कोमल स्वर का लगाव जो है हमारा, प्रत्येक स्वर को अत्यंत कोमल, मधुर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है,
1: जी,
2: जिससे गायन अत्यंत श्रवणीय बनता है। स्वर्ग का दीर्घ विस्तार, एक एक स्वर पर हम ऐसा ठहराव है, एक एक स्वर को हम ठहराव के साथ गाकर उसकी पूरी अनुगुंज और गहराई को उभारते रहते हैं। सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग, स्वरों के बीच की सूक्ष्म श्रुतियां अत्यंत बारीकी से उपयोग किया जाता है।
1: अच्छा।
2: और जिससे गायकी में हमारे निखार आता है, हमारे यानी किराना घराने की गायकी को। क्रेडिट मैं मेरे लिए नहीं लेती, घराना के लिए। मींड और आंदोलन का जो सुंदर प्रयोग हम करते हैं, स्वरों के एक दूसरे से सहजता और निरंतरता के साथ जोड़ने के लिए मींड और आंदोलन का प्रभावी उपयोग किया जाता है। भावपूर्ण अभिव्यक्ति केवल स्वर की शुद्धता ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से राग का भाव भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है।
1: अच्छा।
2: अन्य घरानों से भिन्न क्या है, ऐसा अगर आप पूछे, अन्य घरानों की तुलना में किराना घराने की

0: विशिष्टता, उसकी आवाज की स्वाभाविक मिठास, सुरों की कोमलता तथा प्रत्येक स्वर को अत्यंत भावपूर्ण, धैर्यपूर्ण और मधुर ढंग से प्रस्तुत करने की शैली में निहित है। यही स्वर माधुर्य इस घराने को अन्य घरानों से अलग पहचान प्रदान करता है।
1: जी।
0: मिठास जो आती है वो गा के स्वर को हम जैसा बनाते हैं, तालीम लेते हैं, वहां शुरू होता है। अगर आपकी आवाज ओरिजिनल गिफ्टेड मिठास है उनकी आवाज में, तो और भी हीराबाई जैसा आवाज और मिठास और माधुर्य बन जाता है। आज अगर आपकी इजाजत हो तो किराना घराने के गायकों ने कुछ नाट्य गीत भी गाए हैं।
1: मैं वही कहने वाला था कि बहुत से किराना घराने के मूर्धन्य गायक कलाकार महाराष्ट्र में और कर्नाटक में हुए हैं। और महाराष्ट्र में जो एक संगीत नाटक की परंपरा रही है, तो वो जो स्वर्णिम युग था संगीत नाटकों का, उन दिनों में बहुत से किराना घराने के गायकों ने संगीत नाटकों में
0: हीराबाई बड़ोदेकर, सवाई गंधर्व, माणिक वर्मा,
1: इन सब के ये स्वरों में जो है नाट्य गीत हम सुनते हैं।
0: बहुत ही अच्छा नाट्य गीत,
1: कुछ नाट्य गीतों की हम झलक सुने ऐसा मैं चाह रहा था।
0: हीराबाई बड़ोदेकर प्रत्यक्ष स्टेज पर बहुत ही अच्छा नाट्य संगीत गाती थी, लेकिन बहुत सारे नाट्य गीत उनके रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन हमारी गुरुजी बोलती थी बहुत मीठा गाती थी वो।
1: जी जी।
0: उनका एक नाट्य गीत हम सुनेंगे।

0: विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी के आवाज में नाटिकीत की झलक हम सुन रहे थे। इसके साथ साथ शकुंतला जी, क्यों ना माणिक वर्मा की में बहुत से नाटिकीत है,
1: मेरी मन
0: उसमें
1: का।
0: से किसी एक नाटिकीत को एक उदाहरण स्वरूप हम यहाँ अगर सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: मन अपमान नाटक
0: जी
1: का जो खरा तो प्रेमा
0: जी,
1: थोड़ा सा मिश्रमांड तो,

0: मान अपमान नाटक के इस नाट्य गीत की झलक अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, और इसे सुनते हुए जो गीत के सुर जो है मन में वो हृदयनाथ मंगेशकर जी का कंपोजिशन है, लेकिन फिल्म से
1: कौन सा भी गीत होने दो उसको एक उसकी लोक संगीत की बैठक होती है। वैसा नाट्य गीत भी हम वे अलग अलग शास्त्रीय संगीत से लोक संगीत से लिया है। ये भी जो केसरिया बालम ये जो गाना है वो राजस्थानी लोकगीत है ओरिजिनली।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसको लेकिन
0: और ये मांड भी जो है वहाँ राजस्थानी लोक संगीत से
1: आया है,
0: आया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं लेकिन फिल्म से ये रचना।

बारहवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से कार्यक्रम संगीत सरिता FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

0: कार्यक्रम नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आज के इस अंक को लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो मित्र आशीष मालानी। श्रोताओं, किसी भी स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र का अस्तित्व केवल उसकी सीमाओं, संविधान या आधुनिक तकनीक पर नहीं टिका होता, बल्कि उस राष्ट्र की वास्तविक आत्मा, उसके वीर जवानों के अमर बलिदानों और देशवासियों की राष्ट्रभक्ति में बसती है।
1: स्पंदनहीन हृदय में जोश नया भरना है आज, मातृभूमि की परवरिश का कर्ज अदा करना है आज, शहीदों के लहू लुहान कदम पड़े जिन राहों पर, उन राहों पर बनकर फूल कदमों तले बिखरना है आज।
0: श्रोताओं, आज शनिवार 12 सितंबर 2026 के इस अंक में हम एक ऐसी राष्ट्रीय पहल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने करोड़ों देश के विद्यार्थियों के दिलों में देशभक्ति, नागरिक चेतना और निस्वार्थ सेवा का एक नया ज्वार उत्पन्न कर दिया है। आज के हमारे इस अंक का मुख्य विषय है वीर गाथा परियोजना, नागरिक चेतना का विकास। शौर्य और बलिदान की गाथा हर नागरिक का अभिमान, कर्तव्य और अनुशासन से बढ़ाएंगे भारत का मान।

श्रोताओं, सबसे पहले यह समझते हैं कि वीर गाथा परियोजना है क्या और इसकी शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई यह एक अत्यंत अभिनव और महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की भावी पीढ़ी यानी हमारे स्कूली विद्यार्थियों को भारत के परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र और अन्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की अदम्य गाथाओं से परिचित कराना है। जब हमारे स्कूली बच्चे कारगिल युद्ध के नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों और सरहद पर रात दिन रक्षा करने वाले वीर जवानों के अदम्य साहस की कहानियों को पढ़ते हैं तो उनके भीतर देश के प्रति कृतज्ञता और गौरव की भावना का अभूतपूर्व संचार होता है।

श्रोताओं, वीर गाथा परियोजना केवल पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान देने वाली कोई औपचारिक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से राष्ट्र के नायकों को श्रद्धांजलि देने का एक अद्वितीय मंच प्रदान करती है। इस परियोजना के अंतर्गत देश भर के छात्र छात्राएं निबंध लेखन, कविता, चित्रकला, पोस्टर मेकिंग और बहुमाध्यमी यानी मल्टी मीडिया प्रस्तुतियों के जरिए अमर शहीदों के जीवन व्रत को उकेरते हैं। जब एक नन्हा बालक अपनी चित्रकारी के ब्रश से किसी सैनिक का चित्र बनाता है या एक युवा विद्यार्थी किसी शहीद के बलिदान पर कविता रचता है, तो उसके भीतर देशभक्ति केवल एक शब्द नहीं रह जाती, बल्कि वह उसके आचरण, सोच और नागरिक व्यवहार का अभिन्न अंग बन जाती है।

श्रोताओं, नागरिक चेतना के विकास के दृष्टिकोण से देखें तो वीर गाथा परियोजनाएं एक सशक्त उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है। एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक वही है जो केवल अपने अधिकारों की बात न करे बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों, अनुशासन और राष्ट्रीय मूल्यों को सर्वोपरि रखे।

श्रोताओं, हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए माइनस डिग्री तापमान में सियाचिन की बर्फ पर तैनात रहते हैं। यहाँ तपते हुए रेगिस्तान में सीमाओं की रक्षा करते हैं। उनके इस निस्वार्थ त्याग और अनुशासन को देखकर हमारे विद्यार्थियों के मन में समाज के प्रति जिम्मेदारी, त्याग और कर्तव्य निष्ठा की भावना दृढ़ होती है। यही भावना आगे चलकर उन्हें एक बेहतर, अनुशासित और निष्ठावान नागरिक बनाती है।

श्रोताओं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखें तो भारत सदैव वीरों और त्यागियों की भूमि रहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता उसकी रक्षा करने वाले वीरों के शौर्य पर टिकी होती है। वीर गाथा परियोजना के माध्यम से विद्यालय स्तर पर जब बच्चों को यह समझ आता है कि हमारी आज की शांति, स्वतंत्रता और समृद्धि हमारे वीरों के अनगिनत बलिदानों का परिणाम है, तो उनके भीतर नागरिक चेतना और सामाजिक समरसता का गहराई से विकास होता है। यह परियोजना युवा पीढ़ी के मन में स्वार्थ और संकीर्णता को मिटाकर उन्हें संपूर्ण समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचने की दिशा देती है।

आज के इस आधुनिक और तेजी से बदलते दौर में जहां युवा पीढ़ी डिजिटल दुनिया में व्यस्त है, वहां वीर गाथा परियोजना उन्हें अपनी जड़ों, इतिहास और वास्तविक नायकों से जोड़ने का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। यह परियोजना विद्यार्थियों को सिखाती है कि सच्चा नायक केवल फिल्मों का काल्पनिक कहानियों का नहीं होता, बल्कि देश का असली नायक वह सैनिक है जो तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। इस चेतना के विकसित होने से युवाओं में राष्ट्र प्रथम की भावना सुदृढ़ होती है, जो किसी भी समृद्ध लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है।

अंत में श्रोताओं, वीर गाथा परियोजना केवल एक प्रतियोगिता मात्र नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक के भीतर राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नागरिक चेतना को जगाने का पवित्र महायज्ञ है। आज

हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने देश के अमर शहीदों के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे, उनके आदर्शों का सम्मान करेंगे और अपने दैनिक जीवन में अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार नागरिक बनकर भारत माँ की सेवा में अपना योगदान करेंगे।

आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपने रेडियो मित्र आशीष मालानी को। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार अलवर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आपको पहला गीत सुनवा रहे हैं कुमार साधनू साधना सरगम की आवाज में जुर्म फिल्म से। गीत की रचना इंदिवर की है और संगीत राजेश रोशन का।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अनजान के लिखे गीत को अपनी आवाज दी पार्वती खान ने, गाने की धुन तैयार की बप्पी लहरी ने, फिल्म का नाम डिस्को डांसर का भी आपने गीत सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं नाजिया हसन की आवाज में डिस्को दीवाने फिल्म का गीत। गीत की रचना है अनवर खालिद की और संगीत बिद्दू का।

फिल्म संगीत में अभी आपने सुना नाजिया हसन को डिस्को दीवाने फिल्म में। गीत की रचना अनवर खालिद की थी और संगीत बिद्दू का। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में हथकड़ी फिल्म का गीत।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत नेहा और मीट ब्रदर्स को राबता फिल्म में। अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू के टी2 की स्वीटी फिल्म का गीत, जिसे गाया है चैक नाइट और जस्मीन ने।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का से ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के साथ बैठक में प्रधान

0: मंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते नदाइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटक्यो भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति कासिम फेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
3: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
3: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स में भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: ब्रिक्स वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओनली ट्रेड।
5: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
4: वसुदेव कुटुंबकम।
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, building for resilience

0: innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांगी रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में यह मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है, ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है, ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है, जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मुहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया। कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है, मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ता के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है, भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:15 हुए हैं। आई सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हम आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई हुई गजलें।

भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: ये गजल अभी आपने सुनी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के स्वर में।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज।

On Air app. अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। इसी के साथ सुगम संगीत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बातें फिल्मों की, जिसमें हम आज आपको सुनवा रहे हैं हिंदी गीतों में इंग्लिश का तड़का। स्वर व आलेख है अर्चना जैन का। कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है शिव कुमार शर्मा।

नमस्कार। भाषा कोई भी हो, संगीत की अपनी कोई सीमा नहीं होती, और शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्मी गीतों ने भी समय के साथ कई भाषाओं के शब्दों को अपने तरानों में जगा दी।

आज का हमारा सफर उन फिल्मी गीतों के नाम जिनमें हिंदी के साथ इंग्लिश का तड़का लगा और गाने बन गए सुपरहिट।

0: ऐसा एक गीत रहा 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी का, जहां नाम बताने का अंदाज भी ऐसा अनोखा रहा कि अमिताभ और परवीन बॉबी पर फिल्माया गया ये गीत बन गया एक यादगार तराना।
1: Wait, wait, wait! You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
3: हमारे हिंदी सिनेमा जगत का 80 का दशक ऐसा रहा जहां हिंदी फिल्मी गीतों में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कई बार ऐसा छाया कि जहां इंग्लिश सिर्फ एक दो शब्दों तक सीमित नहीं रही बल्कि गीत के अंदाज का ही हिस्सा बन गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं मिथुन दा की बहुचर्चित फिल्म डिस्को डांसर की, और सदाबहार गीत रहा ये।

कहते हैं हर दिल में एक ख्वाब होता है, ऐसी शख्सियत का ख्वाब जो हकीकत में सामने आए तो लगे बस यही तो है मेरी ड्रीम गर्ल।

1977 की फिल्म ड्रीम गर्ल का यह गीत अपने समय का बेहद लोकप्रिय रहा। किशोर कुमार की दिलकश आवाज के इस तराने में जहां मोहब्बत का इजहार भी थोड़ा शरारती था और अंदाज बेहद आशिकाना।

हिंदी सिनेमा जगत के कई गीतों में इंग्लिश वर्ड्स यूज किए गए, मगर कई गीतों में इनका प्रयोग बड़ी बाखूबी से किया गया। ऐसा ही एक गीत रहा साल 1977 में आई अखियों के झरोकों से फिल्म का, जिसे मीठी आवाज दी हेमलता और शैलेंद्र सिंह ने।

कहा जाता है कि मोहब्बत का इजहार करने के लिए कभी लंबी लंबी बातें नहीं करनी पड़ती, कभी तो बस 3 शब्द ही काफी होते हैं। आई लव यू। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1982 में रिलीज फिल्म खुद्दार की, जहाँ अमिताभ बच्चन और परवीन बावी पर फिल्माए गए इस हिंदी गाने में केवल अंग्रेजी ही नहीं बल्कि और भी कई भाषाओं का संदर्भ सुनने को मिला।

इस गीत में एक तरफ है हिंदी की मिठास तो दूसरी तरफ इंग्लिश में बोले गए प्यार के इजहार में इलू इलू का नौटी सा तड़का और दोनों मिलकर बना देते हैं यह खूबसूरत तराना जिसे संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और मन भावन बोल थे आनंद बख्शी के।

प्यार की भाषा चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, दिल को समझ आने वाली भाषा हमेशा एक ही होती है, मोहब्बत। ये अलग बात है कि उसे इस तरह के शरारती अंदाज में भी गाया जाता है। सुनते हैं 90 की दशक में अक्षय खन्ना और माधुरी दीक्षित की फिल्म मोहब्बत का ये बेहद आशिकाना अंदाज में अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा गाया गया गीत।

अगर बात हो गाने में शरारती भरे अंदाज के साथ इंग्लिश वर्ड्स के तड़के की भी, तो फिल्म राम लखन के इस गीत को कैसे भूला जा सकता है, जो 90 के दशक में बच्चे बच्चे की जुबां पे रहा।

जहाँ नाम बताने का अंदाज इतना मस्ताना होता है, वहीं कुछ पूछने का भी। एक तरफ कहा जाता है कि मोबाइल फोन ने हमारी भाषा ही बदल दी, लेकिन अब जो गाना हम सुनने जा रहे हैं, इस गाने ने तो मोबाइल नंबर पूछने का भी एक फिल्मी अंदाज दे दिया।

0: What is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karo kya dial number?
2: प्यार हो या दोस्ती, अब नंबर भी इंग्लिश में ही मांगा जाने लगा। सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की मीठी आवाज में गाया गया ये मस्त मस्त गीत।

जहां हिंदी गानों में अंग्रेजी तड़के के साथ प्यार का इजहार आई लव यू कह के किया गया, वहीं उसी प्यार के कभी टूट जाने पर सवाल भी उठाए गए, तो अंग्रेजी अंदाज के साथ ही। तो आइए मोहब्बत के इसी मीठे से दर्द को कहीं कहीं इंग्लिश अंदाज के साथ सुनते हैं आमिर खान और मनीषा कोइराला पर फिल्माए गए इस गीत में।

गोविंदा का यही मस्ती भरा अंदाज हमें और भी बहुत से गीतों में देखने को मिला, जहां वो जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस ना लेकर मुस्कुराते गुनगुनाते यही कहते नजर आए।

बॉलीवुड के गानों की खासियत ही यही है कि यहाँ गीत हिंदी में मिलते हैं तो कभी इंग्लिश के तड़के के साथ उन्हें जरा और शानदार, कभी चुलबुला और कभी दिलकश बना दिया गया। ऐसे गीतों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है, जहाँ कुछ चुनिंदा नगमों के इस सफर में आपकी आज मैं हम सफर रही अर्चना जैन।

सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बातें फिल्मों की। अगले हफ्ते होगी मुलाकात हिंदी फिल्मों के किसी नए अंदाज से भरे खूबसूरत तरानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें फिल्मों की FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम पर 11 देशों के बीच चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 71% मतदान हुआ। सबसे अधिक 91.59% वोट बालोतरा के धोरी मन्ना में डाले गए और लंपी रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क, पशु मेले और हाट बाजारों पर रोक लगाई। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिनों तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल हो रहे हैं, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जैसे वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला। ब्रिक्स सम्मेलन 2026 भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसकी थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इस दौरान देशों के बीच आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक व्यापार को सुचारू बनाए रखने के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति मार्ग और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाओं को दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स बिजनेस फोरम सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि भारत नौवहन की स्वतंत्रता और समुद्री नाविकों की सुरक्षा का प्रबल समर्थक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
1: आज जब दुनिया में ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। ब्रिक्स पे भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
0: फोरम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियां सहित कई वैश्विक नेताओं ने भी संबोधित किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रदेश के हर जिले में शी मार्ट स्थापित करने पर जोर दिया है। मंत्रालय के सचिव रोहित कंसल और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की संयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में श्री कंसल ने कहा कि शी मार्ट के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार मिल सकेगा, साथ ही हस्तशिल्प के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दौरान राजीविका विकसित भारत जी राम जी योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा की गई। श्री कंसल ने राजीविका के उत्पादों को बड़े बाजार से जोड़ने के लिए क्लस्टर विकसित करने और ई सरस मेले आयोजित करने का भी सुझाव दिया। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश को 2,89,000 नए आवासों का लक्ष्य मिला है। इनकी स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसलमेर के पोखरण रेंज में भारतीय वायुसेना

0: सोमवार से ड्रोनाथॉन 2026 आयोजित करेगी। 3 दिन के इस ड्रोनाथॉन में भारतीय उद्योग जगत की कंपनियां स्वदेशी ड्रोन और ड्रोन रोधी तकनीकों का विकास, परीक्षण और प्रदर्शन करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को मानव रहित हवाई प्रणालियों और ड्रोन रोधी प्रणालियों में अपनी क्षमताओं और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने का अवसर देना है। ड्रोनाथॉन के जरिए मौजूदा जरूरतों के अनुरूप तकनीकी समाधान तलाशने और उनकी युद्धक प्रभावशीलता का आकलन करने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 71% मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण में 87,63,595 मतदाताओं में से 61,93,865 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके साथ ही दोनों चरणों में प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों में कुल मतदान 72.95% रहा। दूसरे चरण में 6 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 121 नगर पालिकाओं सहित 147 नगरीय निकायों के लिए वोट डाले गए। इस दौरान 4,474 वार्डों के लिए 9,758 मतदान केंद्र बनाए गए थे और 18,266 उम्मीदवार मैदान में थे। आयोग के अनुसार दूसरे चरण में बालोतरा जिले की धोरीमन्ना नगर पालिका में सबसे अधिक 91.59% मतदान हुआ, जबकि सिरोही नगर परिषद में सबसे कम 62.62% मतदान दर्ज किया गया। इससे पहले 9 सितंबर को हुए पहले चरण में 162 नगरीय निकायों में 76.42% मतदान हुआ था। दोनों चरणों के मतदान पूरा होने के बाद अब मतगणना 14 सितंबर को होगी। प्रदेश में लंपी रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए पशु मेलों और पशु हाट बाजारों पर रोक लगा दी गई है। पशुपालन निदेशक डॉक्टर सुरेश चंद मीना ने जयपुर में लंपी रोग की स्थिति और नियंत्रण उपायों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल प्रदेश के 10 जिले लंपी रोग से प्रभावित हैं, जिनमें अधिकतर पूर्वी राजस्थान के हैं। डॉक्टर मीना के अनुसार सक्रिय गौवंशों में संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला तथा राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष और त्वरित प्रक्रिया दल गठित किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता करते हुए पशुपालन विभाग के प्रमुख शासन सचिव विकास सीताराम जी भाले ने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर बीमार पशुओं का सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए। पाली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 में भाग लेने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। जिला युवा अधिकारी महेश सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले के विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाकर युवाओं को कार्यक्रम के उद्देश्यों, पंजीकरण प्रक्रिया और प्रतियोगिता के अलग अलग चरणों की जानकारी दी जा रही है। पहले चरण में क्विज आयोजित की जा रही है। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में राजस्थान और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके पाली निवासी युवा मनीष सोमनानी ने अधिक से अधिक युवाओं से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है।
1: आई भारत ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया तो मेरी आइडियाज, मेरी स्किल्स थी वो मेरे को नेशनल लेवल तक कैसे पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक और विकसित भारत में मैं अपना योगदान कैसे दे सकता हूँ, तो आपसे सबसे मैं आह्वान करता हूँ। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपने स्किल्स का अपने अलग अलग ट्रैक्स में आप पार्टिसिपेट कीजिए और इसमें अपनी सहभागिता कीजिए और आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का नाम नेशनल लेवल पर रोशन कीजिए।
0: प्रदेश में रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश मेला और रामदेवरा मेला आज से शुरू हो रहे हैं। दोनों मेलों में श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन और रेलवे की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम पर 11 देशों के बीच चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 71

0: प्रतिशत मतदान हुआ और लंपी रोग के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार सतर्क, पशु मेले और हाट बाजारों पर रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में प्रादेशिक समाचार एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: और अब सुनवाते हैं हम टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। कुमार ने इसे लिखा है, शरीफ तोशी का संगीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए अब आपको सुनवाते हैं हंसी तो फंसी। इस फिल्म का गीत चिन्मय श्रीपाद, शेखर रावजियानी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है और विशाल शेखर का संगीत।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरिजीत सिंह का गाया ये गीत सुनिए जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने। सोहेल सेन की ने इसके गीत को सुरों में ढाला है और फिल्म का नाम गुंडे।

बैंग बैंग। इस फिल्म का गीत अब सुनिए विशाल ददलानी की आवाज में। और गीत और संगीत, गीत है विशाल ददलानी का, संगीत विशाल शेखर का।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? एक शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हिंदी फिल्म संगीत के समुद्र में गोता लगाएं तो हाथ आते हैं कई अनमोल मोती। आज हम कुछ ऐसे बेमिसाल चमकीले मोती लेकर आए हैं जिन्हें तराशा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन हैं हमारे आज के फनकार।

दरअसल शंकर जयकिशन की जोड़ी में से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से उन रचनाओं को सुनेंगे जिन्हें संगीतकार जयकिशन ने तैयार किया था। हालांकि शंकर अगर आसमान है तो जयकिशन है।

ये गीत संगीतकार जयकिशन को बड़ा ही प्रिय था। दरअसल जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पांचाल। गुजरात के बाजदा नामक गांव में जयकिशन जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1932 में। जयकिशन जैसे संगीत रचने के लिए ही बने थे। उनके एक भाई बलवंत गांव के एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाया करते थे। बस यहीं से जयकिशन की रुचि संगीत में जागी। वे उल्टे हाथ से हारमोनियम बजाने लगे। आरंभिक संगीत शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद वाड़ी लाल जी से हुई। फिर प्रेम शंकर नायक से उन्होंने संगीत की तालीम ली।

रोजी रोटी की तलाश में अपने संबंधियों की मदद से जयकिशन मुंबई आए और शिवडी स्थित एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, एक जुनून था जो उन्हें हारमोनियम की धुन की ओर खींचता था।

0: रास्ता।
1: नियति का खेल देखिए कि कुछ ही समय के बाद जयकिशन पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं उनकी मुलाकात शंकर से हुई और बाद में वही उनके अभिन्न सहयोगी बने और फिर मशहूर हुई ये जोड़ी शंकर जयकिशन के नाम से। शंकर उन दिनों संगीत का जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के यहाँ तबला वादक के रूप में काम करते थे।

रोचक बात ये है कि राज कपूर ने जब आरके प्रोडक्शंस की स्थापना की और फिल्म आग बनाई तो उसके संगीतकार बने राम गांगुली। संगीतकार शंकर जयकिशन राम गांगुली के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे, लेकिन इसके बाद जब फिल्म बरसात आई तो यहाँ से शुरू हुई शंकर जयकिशन की सुरीली स्वर यात्रा।

फिल्म बरसात के बाद तो एक पूरी टीम ही बन गई। गीतकार बने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और कंपनी राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस। आइए जरा इस टीम की कुछ रचनाओं पर गौर करें।

सुनने वालों को ये सचमुच एक पहेली की तरह लगता होगा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी में से कौन से गाने शंकर ने बनाए और कौन से कंपोज किए जयकिशन ने। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपकी ये रेडियो सखी अब आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रही है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने तैयार की थी।

दरअसल जयकिशन रूमानी तबीयत के शख्स थे, इसलिए नर्म नाजुक धुने बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अब फिल्म लव मैरिज के इस गीत की नजाकत देखिए।

जयकिशन ने प्रेम विवाह किया था। वे बड़े संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। मोहब्बत भरे तरानों को तैयार करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। धुने बनाने के साथ साथ जयकिशन शायरी और कविता के भी बड़े शौकीन थे। शायद इसीलिए शायरी और कविता की संवेदनशीलता और नाजुकी उनके मोहब्बत भरे नगमों की धुनों में खूब खूब झलकती है।

फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत, जिसे जय किशन ने अहमदाबाद की कई खिड़कियों वाली ऐतिहासिक इमारत को देखकर हसरत जयपुरी से लिखने को कहा था,

दोस्तों, ये जिक्र उन गीतों का है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने बनाई थी। फिल्म दिल अपना और प्रीति पराई।

दरअसल अपनी संगीत यात्रा में शंकर जयकिशन एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीतों की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये जानना बड़ा रोचक लगता है कि कौन से गीत कंपोज किए शंकर ने और कौन से जयकिशन ने।

दोस्तों, संगीतकार जयकिशन एक सीधे सादे इंसान थे, लेकिन थे बड़े मेहनती। वे खाने के बड़े शौकीन थे, न सिर्फ खाने के शौकीन बल्कि वो खुद बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। दोस्तों के साथ बैठकें जमाना उन्हें बड़ा पसंद था। जयकिशन अलग सुबह उठकर अपने गानों की धुनें बनाने में लग जाते थे।

दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत संसार के सुर समुद्र थे। उनका काम सचमुच बड़ा

व्यापक रहा है। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में संगीत देने के बावजूद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सबसे हिट नगमे दिए हैं। यहाँ तक कि एक दौर में उनकी लगभग हर फिल्म के नगमे गली गली में गूंजा करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे।

सन 1971 में 39 वर्ष की छोटी आयु में संगीतकार जय किशन ने इस संसार को अलविदा कह दिया।

संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन को हमने याद किया आज के फनकार में। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं
5: हाँ जी, हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
5: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
5: है ना, बोलो, बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
6: कुछ लिखा
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
7: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के ठीक 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं चंद संदेश।
8: रवैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
9: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
10: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
9: हाँ।
10: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
9: हाँ।
10: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
9: हाँ? पता नहीं।
10: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
11: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है रेरा

0: राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: ये भारी होता जाता था क्योंकि हर माँ इस बात के लिए चिंतित रहती है कि उसके रहते उसके बच्चों का विवाह हो जाए। यदि लड़की है तो और चिंता रहती है, माया क्या करे क्या न करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। इसी उधेड़बुन में वो क्लिनिक पहुंच गई। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह रेडियो ऑन किया। कुछ पेशेंट बाहर इंतजार कर रहे थे, उनका उसे ध्यान ही न रहा क्योंकि उस समय उसके पसंदीदा आरजे का प्रोग्राम चल रहा था। चिट्ठी आई है, मुझ तक अपनी खबर न भेजो, ये बात मुझे मंजूर नहीं, दिल के तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, दिल की तुम्हारे बात न पूछूं ऐसा भी मगरूर नहीं, थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी चलती रहती है रिश्तों में, अब जिद छोड़ो मुंह ना मोड़ो खत लिख छोड़ो, ऐसी क्या रुसवाई है, चिट्ठी आई है।

डॉक्टर माया की असिस्टेंट ने उसे आवाज दी तो उसकी तंद्रा टूटी। उसे याद आया कि वो क्लिनिक में है, वरना वो गाने के साथ किसी और ही दुनिया में विचरण कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की जगह एक मीठी मुस्कान खिल गई। वो बोली, हाँ भेज दो। पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, वरना इतनी देर प्रतीक्षा करना मुश्किल हो जाता। खैर, माया ने उसकी नाड़ी देखी, पूछा, क्या प्रॉब्लम है? पेशेंट ने कहा, सिर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। माया ने मन ही मन कहा, नींद उसे भी नहीं आती।

जिस दिन आरजे समीर का प्रोग्राम सुनती है वही ख्वाबों ख्यालों में रहता है। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके गानों की पसंद, सब कुछ कमाल है। समझ में नहीं आता कि उसके लिए दीवानगी सुकून है या दर्द। पेशेंट से बोली, आप नींद ठीक से लिया करें, नींद न लेने से एसिडिटी रहती है और इसी कारण सिर में दर्द रहता है, और कोई खास बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर एसिडिटी रही तो दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। खाने में छाछ यानी कि मट्ठा का अधिक इस्तेमाल करें, सलाद में ककड़ी जरूर खाएं, रात में देर तक बिल्कुल मत जागिए, समझ रहे हैं आप, और आप ठीक हो जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पेशेंट ने जी और धन्यवाद के साथ विदा ली। माया ने रेडियो की आवाज फिर तेज कर दी। FM के दीवानों, मैं आपका दीवाना समीर आपकी नजर करता हूं ये गीत।

निहार रहे हैं। उसी प्रकार माया को भी लगता कि समीर भी कहीं ना कहीं उससे प्रेम करता है, क्योंकि वो उसके हर प्रोग्राम को सुनती और खत लिखती, खत में बहुत कुछ जाहिर करती। वो पत्र केवल गीतों व कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहते, वो उसमें अपने दिल की दास्तान भी बयान करती। वो जैसा सोचती कहीं न कहीं वही भावनाएं उसे गानों के द्वारा सुनाई पड़ती। वो जो सोचती सच्ची तो है। इस प्रकार धीरे धीरे माया को समीर की आवाज का एडिक्शन हो चला था, यानी कि नशा हो चला था। समीर हमेशा तो रेडियो पर रहता नहीं था, उसने इसके लिए तरकीब निकाली। वो उसके कार्यक्रमों को रिकॉर्ड करके रख लेती और उसे बार बार सुनती, लेकिन संडे के कार्यक्रम को वो बिल्कुल मिस नहीं करती। उसमें श्रोताओं के पत्र पढ़े जाते, जिसमें श्रोता अक्सर उसकी आवाज की तारीफ करते, कुछ गानों का जिक्र होता। यह सुनकर माया को भी अच्छा लगता।

ऐसे गाने सुनकर हमेशा उसे लगता कि वो गाने उसी के लिए बजाए जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत से चित्र होते हैं जिनको देखने से लगता है कि वो आप

डॉक्टर माया को जलन तब और होती जब वो किसी और महिला का पत्र हंस हंस कर पढ़ता और उसकी लिखावट की तारीफ करता, उसको शुक्रिया कहता, कहता कि आपको कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, मतलब आप अच्छे हैं, अच्छी चीज़ें देखने वाले की नज़र अच्छी होती है, उसके पत्र भी पढ़े जाते। परंतु कई बार ऐसा भी हुआ कि डॉक्टर माया ने अपने खत के इंतज़ार में पूरा कार्यक्रम सुना परंतु उसका पत्र नहीं पढ़ा गया। समीर के मुंह से अपना नाम सुनने की प्रतीक्षा में उसने न जाने कितने लोगों की तारीफों के दर्द को झेला। मन तो किया कि रेडियो को उठाकर पटक दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकी। उसे रियलाइज हुआ कि वो डॉक्टर है, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। कई बार हमारी बनाई हुई सीमाएं ही हमें बोझ लगने लगती हैं, पर वही हमें बचाती भी हैं। इस बीच कार्यक्रम समाप्त होने का वक्त आ गया। समीर ने शेर पढ़ा, FM के दीवानों में आपका दीवाना समीर। चलते चलते कुछ शेर आपकी नज़र करता हूँ। कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ हकीकत तो बहुत कुछ सिर्फ छल है जिंदगी, कुछ अमृत है और कुछ मधुमय गरल है जिंदगी। नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, नींव सपनों पर पड़ी और रेत की दीवार है, और फिर ये जुल्म ताशों का महल है जिंदगी। और एक गाने के साथ आपको छोड़ जाता हूं, तो खुश रहिए और अपने दिल का ख्याल रखिए। इस शेर ने माया को खुद में झांकने को विवश किया।

0: कभी तो हंसाए।
1: इन्हीं सवालों को खोजती खोजती माया घर पहुंच गई। कोई हल नहीं था। कई बार सवाल का हल खोजते खोजते हम और उलझ जाते हैं। ऐसे में हमें सोचने की प्रक्रिया को रोक देना चाहिए, यानी थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। माया खाना खाकर सीधे बिस्तर पर आई। हमेशा वो खाने के बाद थोड़ा वॉक करती थी, परंतु आज मन अनमना था तो सीधे सोने के कमरे में आ गई। किसी से ज्यादा बात नहीं की, वो अपने में ही खोई रही। वो क्यों खोई है, वो क्या खोज रही है, इसका कोई तर्क संगत जवाब उसके पास भी नहीं था। माँ ने बेटी को उदास देखकर पूछा, क्या हुआ, इतना खोई खोई से क्यों है? तूने आज ठीक से खाना भी नहीं खाया, तबीयत तो ठीक है ना? माँ सब कुछ समझती है, उसे झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन वो तुमसे सुनना चाहती है। माँ जानना चाहती है कि उसकी बेटी की जिंदगी में कौन है। पर माँ को वो क्या बताए कि उसने ख्वाबों की नींव पर प्रेम का महल बनाया है, उसी में रह रही है। वो जिससे प्रेम कर बैठी है वो उसे जानती तक नहीं, उससे कभी मिली नहीं। उसकी आवाज की दीवानी है, उसके अंदाज की दीवानी है, उसी के साथ जीवन के सपने बुन लिए हैं, उसी के साथ शामें गुजारती है।

आज जब वो क्लिनिक के लिए निकली तो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। हालांकि उसके घर से क्लिनिक बहुत दूर नहीं था, यही कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रही होगी, परंतु आज उस रास्ते से कोई रैली निकल रही थी इसलिए इतना ट्रैफिक था। उसे बहुत झुंझलाहट हुई, अपनी स्कूटी इधर उधर जैसे तैसे काट कर क्लिनिक पहुंची। स्कूटी साइड स्टैंड पर लगाई, सीट खोलकर हेलमेट रखा, तभी आसमान में पक्षियों की मंडली गीत गाते हुए उधर से गुजर गई। उसे बड़ा भला लगा, वो एक पल को ठहर गई। उसकी नजर डाल पर बैठे हुए नीलकंठ के जोड़े पर पड़ी। इन छोटे छोटे दृश्यों से वो लसित हो उठी। उस उल्लास को उस आवाज ने कई गुना बढ़ा दिया। डॉक्टर माया लिखती हैं कि आपके कार्यक्रम के इंतजार में हमारा हर पल गुजरता है। आपकी आवाज कानों में गूंजती रहती है और कुछ सुनाई नहीं देता। अरे डॉक्टर माया जी, ऐसा मत कीजिए, आपके ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अगर आप इस प्रकार बेखबर हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? वैसे इंतजार तो मुझे भी रहता है आपके मीठे मीठे खतों का, यही तो मेरी लाइफ है। आपके शब्दों में जो प्रेम है वो अद्भुत है। मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि आपकी मुस्कुराहट भी बहुत खूबसूरत होगी। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो आपको मुस्कुराते हुए देखते होंगे। और हाँ, मुझे तो लगता है कि आपके मरीज तो ठीक होना ही नहीं चाहते होंगे। और मेरी आवाज तो इसलिए आपको अच्छी लगती है क्योंकि आप दिल से सुनती हैं, लोग सुनते होंगे कानों से। अभी और खत, और भी बातें।

माया को यकीन हो चला था कि उसकी बात उस तक पहुंच गई। आज जोर से चिल्लाना चाहती थी, समीर आई लव यू। ये तब की बात है जब सोशल मीडिया जैसी चीज नहीं हुआ करती थी, मोबाइल भी इतना कॉमन नहीं हुआ था। माया से अब नहीं रहा जा रहा था कि कैसे भी करके वो समीर से मिलना चाहती थी। टेलीफोन डायरेक्टरी से उस रेडियो स्टेशन का नंबर निकाला, उसमें उसे 3 नंबर मिले। पहला ट्राई किया, आवाज आई, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। दूसरा ट्राई किया, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। ये संदेश किसी महिला की आवाज में था। एक बारगी माया को लगा कि जोर से गाली दे, पर वो बोली, चुप कर, समीर को बुला। पर वो रिकॉर्डेड आवाज थी, इसलिए कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बड़ी कोशिशों के बाद तीसरा नंबर लग गया। उसका धैर्य काम आया। किसी ने फोन उठाया और बोला, कौन? माया, डॉक्टर माया, क्या समीर जी से बात हो सकती है? रूखी आवाज में उत्तर मिला, आप उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? माया ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। क्योंकि वो नहीं है। नहीं है मतलब? अभी कुछ देर पहले तो थे। हाँ थे, पर अब नहीं है, वो चले गए, उनका शो खत्म हो गया। अब कब आएंगे ये हम आपको नहीं बता सकते। क्यों? ऐसा रूल है, आपका मैसेज दे देंगे। अच्छा ठीक है। माया उदास हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें।

माया का क्लिनिक कुछ खास नहीं चल रहा था, वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। अधिकतर समय सपने बुनने में निकल जाता। उसकी शादी, बच्चे, न जाने क्या क्या सोच लिया करती थी। जब भी वो किचन में खाना बना रही होती, उसे लगता अभी अचानक समीर आएगा और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लेगा। वो चौंक उठेगी, फिर खुद को ही समझाती, ये क्या पागलपन है, वो यहाँ कैसे आ सकता है, मुझसे तो वो कभी मिला भी नहीं, मेरे घर का पता भी उसे पता नहीं है। फिर वो सोचने लगती कि ठीक है, वो मुझसे नहीं मिला, मैं उससे नहीं मिली, पर मेरे खत तो उसे मिले ही हैं। उसकी आवाज़ में मैंने उसको महसूस किया है।

ये बात माया अच्छी तरह जानती थी कि वह अपने साथ छल कर रही है। जिन ख्यालों के सहारे वो जिंदगी जीने के सपने देख रही है वो संभव नहीं है। भोजन की खुशबू से पेट नहीं भर सकता, बल्कि वो भूख को और बढ़ा देती है। मोहब्बत के एहसासों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत की जमीन पर उतरना ही पड़ेगा। डॉक्टर माया ने सोच लिया अपने ख्वाबों को अमली जामा पहनाना ही है, कुछ भी हो जाए। वो समीर से बात करके रहेगी। एक बार फिर उसने ऑफिस में कॉल किया, फिर से वही आवाज, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद प्रयास करें। माया का धैर्य जवाब दे रहा था।

को तैयार हो रही थी तो माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाना, कुछ लोग आने वाले हैं। पहले तो माया को लगा कि कह दे आप भी ना किस किस को बुला लेती हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। माँ को बड़े इत्मीनान से देखा, मुस्कुराई और कहा, ठीक है मैं आ जाऊंगी, कुछ लाना है तो बता देना। माँ ने कहा, अरे तू आ जाना, बाकी सब मैं देख लूंगी।

0: FM एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। सवेरे के ठीक 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है शक्ति।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर।

0: सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला और शिकायती गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है नगीना।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अमित कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रपट संगीत में अगला और अंतिम गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का और फिल्म का नाम है चालबाज़।

0: मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत जी। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका सर।
1: राजेश जी, जो आपका सबसे बड़ा काम है वो मुंबई को लेकर है। आपकी कई किताबें हैं, जो मेरी नजर सबसे ज्यादा पड़ी वो आमची मुंबई सीरीज की दो किताबों पर पड़ी है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मुंबई कब आए, और दूसरा ये कि ये जो मुंबई पर काम करने का सिलसिला एक के बाद एक के बाद एक मुंबई पर आपकी किताबें आ रही हैं, ये कैसे शुरू हुआ?
2: देखिए, मैं 1989 में मुंबई आया, अमेठी से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। तो जो मेरा पहला ठिकाना बना चर्चगेट इलाके में, और वो है मुंबई यूनिवर्सिटी के राजाबाई टावर के ठीक सामने महर्षि कर्वे रोड पे वो बिल्डिंग है।
1: अच्छा,
2: क्वींस कोर्ट। और अगर आप देखें तो जो वास्तविक मुंबई है वही इलाका है चर्चगेट के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में। जितनी चीज़ें हैं मुंबई को लेके, चाहे इतिहास से जुड़ी हो या संस्कृत से जुड़ी हो या राजनीति से जुड़ी हो या मुंबई के विकास के जुड़ी हुई, सारी की सारी चीज़ें उसी 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगी। चाहे विक्टोरिया टर्मिनस हो, चाहे और भी चीजें हो, लायन गेट हो जहां नौसेना विद्रोह हुआ था,
1: रीगल
2: टॉकीज हो, ओवल मैदान हो, क्रास मैदान हो, आजाद मैदान हो, ये सारी की सारी चीजें वही हैं। तो उस इलाके में रहते रहते मुंबई के बारे में मुझे प्रेम जगा, एक मोहब्बत जगी, जिसको आप इश्क कह सकते हैं। तो मैं मूल रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करने के लिए आया था।
1: अच्छा।
2: तो मेरे बैच के जितने भी लोग थे वो एक एक करके समय आने पर मुंबई से ट्रांसफर करवा के अपने गांव की ओर चले गए, लेकिन मुंबई के प्रति प्रेम की वजह से मैं रुका रहा। और 1990 के आसपास फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो पहला मतलब मेरी नज़र में आया कि जिस शहर ने मुझे रोजी रोटी दी है, उस समय तो रोजी रोटी ही थी, नाम और सम्मान की कोई बात ही नहीं थी, संघर्ष का दिन था। तो मैंने सोचा कि मुंबई पे लिखना शुरू करना चाहिए। और आप ये देखिए, विसंगति देखिए कि मैं गंभीर लिखता हूँ मुंबई पे, लेकिन जो मैंने पहला लेख लिखा था वो जो था ये था, यह है बॉम्बे मेरी जान, और वो व्यंग लेख था मुंबई पे, वो मेरी शुरुआत थी।
1: जी, जिस इलाके से आपने शुरू किया, आपने बताया कि क्वींस कोर्ट वाला इलाका था जहां आपकी रिहाइश बनी, साउथ बॉम्बे का वो इलाका जहां चारों तरफ इतिहास बिखरा हुआ है, और भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो भी उसी इलाके में है। तो आपका जो आना जाना, आपका जो काम काज है वो पूरा साउथ मुंबई में हुआ। वो कौन सी चीजें थी दक्षिण मुंबई की जिन्होंने आपको बहुत फैसिनेट किया?
2: वो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मेरे सामने वो राजाबाई टावर मुंबई यूनिवर्सिटी का, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको पता होगा वाटसन होटल,
1: बिल्कुल जहां मुंबई का पहला सिनेमा दिखाया।
2: यस, पहला ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने वहां पहला सिनेमा दिखाया। और दूसरी बात है कि बड़े बड़े लोग मोहम्मद अली जिन्ना से लेके मार्क ट्वेन तक उस वाटसन होटल में ठहरे। और एक बात और भी, आज तो 5 स्टार 7 स्टार का जमाना है सर, उस जमाने में जब स्टार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था तो ये वाटसन होटल जो है 7 स्टार के तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करता था। जब मैं वाटसन होटल से गुजरता था 1990 के दशक में, तो मुझे जब मैं लगता था उसकी हालत देख के, बाद में तो उसका रिनोवेशन होने लगा, तो मैं देखता था तो मैं सच में अंदर से रोता था कि जिस होटल ने, जिसमें ल्यूमियर्स ब्रदर ने पहली फिल्म दिखाई, और जो होटल इतिहास का गवाह है, आप देखिए उसकी दुर्दशा।
1: ना लोगों को ये पता है कि ये वो जगह है, ना कोई बोर्ड
2: कुछ
1: है,
2: नहीं। और या आप क्रॉफर्ड मार्केट की ओर अगर थोड़ी दूर पे जाएं, चर्चगेट इलाके से 1.5 किलोमीटर दूर, तो क्रॉफर्ड मार्केट की दुर्दशा। इस तरह की चीजों को देख के जो मेरे मन में आया कि मुंबई पे लिखना चाहिए। और थोड़ी दूर पे लायन गेट था,
1: आपको
2: पता है कि रॉयल नेवी का जो बहुत बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी शुरुआत वहीं से हुई,
1: बॉम्बे और कराची वाला।
2: यस, वो जो विद्रोह था बॉम्बे वाला, और वो एक साथ कई जगहों से हुआ है।

0: दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, आप सब पता होगा क्योंकि आप भी मुंबई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जहाँ पे ये महाराष्ट्र पुलिस का मुख्यालय है
1: जी,
0: वो जगह पहले कब्रिस्तान थी, मेडम पॉइंट एक जमाने में, क्योंकि इस इलाके में पूरा का पूरा इतिहास बिखरा है। हालांकि सर मैं इतिहास का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन वहां से जो मुंबई को लेके एक रुचि उत्पन्न हुई वो बराबर चलती रही। 2012 में मुंबई पे मेरा पहला काम आया, एक मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद।
1: क्या पुस्तक थी?
0: मराठी पुस्तक थी मुंबई तिल गुनेगारिंचा एनसाइक्लोपीडिया, मेरे मित्र श्री प्रभाकर पवार जी की मराठी में पुस्तक, वो दैनिक सामना से जुड़े थे। और 1993 से मैं दोपहर का सामना से जब जुड़ा तो मैंने 2012 में उसका अनुवाद किया, मुंबई माफिया एक एनसाइक्लोपीडिया।
1: ये
0: मुंबई पे मेरा पहला
1: मतलब क्राइम वाला पूरा काम, जितने डॉन हुए हैं
0: जी, मेरी दिलचस्पी थी। और फिर उसके बाद चलता गया और 2015 से लेकर 2020 तक, यानी कि पूरे के पूरे 5 सालों तक दोपहर का सामना में मेरा एक कॉलम छपता था आमची मुंबई, मुंबई के इतिहास
1: पे। उसमें आप लगातार इतिहास पर काम करते थे
0: लगातार। और 2019 में मेरी पहली किताब आई आमची मुंबई
1: जी।
0: और जब आमची मुंबई आई, आपने बात की आमची मुंबई 2 की, जब आमची मुंबई आई 2019 में तो वो आमची मुंबई जो है वो अखबारी लेखन था। अखबारी लेखन की एक सीमा होती है और मुंबई पर काम करने की सर मेरी भूख इतनी थी कि किसी अखबार के कॉलम से वो मिट नहीं सकती थी। तो 2019 से, क्योंकि कई कई कहानियाँ इतनी रोचक थी, इतनी बड़ी थी कि वो अखबार के कॉलम में समाहित हो नहीं सकती थी, तब मैंने 2019 में आमची मुंबई 2 पे काम करना शुरू किया, जो पिछले साल 2025 में आई।
1: क्या बात है। तो दो बड़ी किताबें मुंबई के इतिहास पर ये नजर आती हैं और उसके अलावा मुंबई के माफिया पर भी आपकी किताब है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की जाए कि मुंबई के इतिहास पर काम करना इतना आसान नहीं है, तो किन लाइब्रेरीज की और ग्रंथों की खाक छानते हुए आपने तथ्य जमा किए और ये कितना मुश्किल था?
0: वो एक बड़े इतिहासकार ने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक ये है कि हम उससे कोई सबक नहीं लेते। जब हम इतिहास पे शुरू करते हैं तो हमको अपना जो नजरिया है बहुत विस्तृत करना पड़ता है। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो आज इंटरनेट का जमाना है, हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं जो है अगर किसी पे भरोसा करता हूँ इस मामले में ग्रंथालय की, तो दो है। पहले नंबर पे एशियाटिक लाइब्रेरी है, दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी प्रचार सभा की लाइब्रेरी है। और जो मेरे संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का पुस्तकालय भी है वो बहुत समृद्ध है।
1: अरे गजब।
0: वहाँ हिंदी अंग्रेजी मराठी की बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, रेफरेंस की पुस्तकें हैं, तो वहाँ से मैंने शुरू किया। इस बारे में मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, लगातार रिसर्च करता हूँ। मैं सर आपको रिसर्च का एक उदाहरण देना चाहूँगा
1: जी,
0: कि आम धारणा है कि मुंबई जो है 7 द्वीपों से बनी है, उसमें मुंबई द्वीप जो मुख्य द्वीप है और माहिम है, फिर कोलाबा है, मझगांव है, वर्ली है, ओल्ड वुमन आइलैंड है, लिटिल कोलाबा है, इस तरह के 7 द्वीप हैं, आम धारणा है। लेकिन हकीकत ये है कि आप किस तरह से कहते हैं कि मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। मेरी पुस्तक आमची मुंबई 2 का पहला लेख है वह 7 द्वीप जिनसे मिलकर मुंबई बनी, लेकिन उसी पुस्तक में 7वां लेख है क्या मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। हकीकत में आप 7 द्वीप कहते कैसे, वो थियरी आई कहां से? मुंबई पे इतिहास के शोध किया है मिस्टर टिम राइडिंग ने, बहुत बड़ा शोध है उसने। उनका कहना है कि 7 द्वीप नहीं थे, जो 7 द्वीपों की बात है तो वो 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो मिथक और भ्रांति से आई। एक्चुअली वो जो द्वीपों की संख्या है 4 से 6 है ओरिजिनल। रॉबर्ट मर्फी ने इस प्रश्न को उठाया भी, उन्होंने एक नक्शा भी बनाया जिसमें 4 या 6 द्वीप, क्योंकि वो 2 को गिनते नहीं थे, मझगांव और परे।

0: उनकी नजर में द्वीप अलग अलग नहीं थे,
1: वो लैंडलॉक एरिया है।
0: हाँ, लेकिन उसके बाद हकीकत में जो सात द्वीपों की थियरी आई सर, वो ईसवी सन 150 में टॉलेमी का एक ग्रंथ है ज्योग्राफिका, पूरा नाम है लेंडास द ज्योग्राफिका, यानी कि भूमि का भौगोलिक शास्त्र। उसमें जो है मुंबई यानी पूर्व में स्थित एक जगह का जिक्र जो है हेप्टानेशिया के रूप में किया गया है। हेप्टानेशिया का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है सात। तो जो सात का मिसकंसेप्शन है वो उधर से आया, ओरिजिनल वो छह द्वीप से ज्यादा नहीं थे। तो हमको इस चीज को खोजने के लिए जो टिम राइडिंग का शोध था, बहुत लंबा चौड़ा शोध था, तो मैंने कम से कम उसकी तीन जगहों पे क्रॉस चेकिंग की, जो यहाँ लिखा है वो सच है क्या, क्योंकि जब हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं किताब के जरिए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा नहीं कि कभी किसी पाठक ने ये बताया कि सर ये आपने गलत लिखा है। तो उसमें मैंने दो तीन लाइब्रेरी की खाक छानी और कई कई चीज़ें हमको मिली, तो उससे लगा कि नहीं, जो टिम राइडिंग का शोध है वो अपनी जगह पे सही है, रॉबर्ट मर्फी का भी शोध सही है, जॉन थॉर्नटन का एक नक्शा था वो भी सही है। तो इस ढंग से इस शोध में होता है, एक सिर्फ छोटी सी घटना, एक छोटे से प्रसंग को लेके मैं इस शोध की बात और आगे बढ़ाऊंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, आजादी की पहली लड़ाई, तो वो और जगहों की तरह मुंबई में भी हुई। मुंबई में हुई का मतलब यह है उसको करने की कोशिश की गई। मरीन बटालियन के कुछ लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने मिलके ये योजना बनाई। उनकी योजना थी कि नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में हम विद्रोह करेंगे मुंबई में। लेकिन उस जमाने में मुंबई का कमिश्नर था चार्ल्स फोरजेट। फोरजेट का जो इंटेलिजेंस था वो बहुत गहरा था, बहुत अच्छा था। तो सोनापुर यानी मरीन ड्राइव के इलाके में, मरीन लाइंस के इलाके में क्रांतिकारियों की, सैनिकों की बैठक होती थी। फोरजेट खुद भेष बदल के उसमें गया, उस बैठक में, और वहां से ये योजना जो है, इस योजना का पर्दाफाश हो गया। मुंबई पुलिस ने, चार्ल्स फोरजेट ने उस क्रांति को जो है उसको एकदम उसका पर्दाफाश कर दिया और कई लोगों को उसमें सजाएं मिली, जिसमें दो लोगों को आजाद मैदान में, उस जमाने में कांपा का मैदान कहा जाता था, तोप से तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। दो सिपाही, मंगल गडरिया और सैयद हुसैन। क्योंकि वो अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिशों का शासन था, तो किसी भी पुस्तक में मंगल गडरिया और सैयद हुसैन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ नाम मिलता है। मुझे खोजबीन के दौरान कम से कम एक ही मुद्दे पे मैं 6 महीने लगा था, तो कहीं से सिर्फ इतना पता चला कि मंगल गडरिया जो था वो मूल रूप से गोंडा के गांव का निवासी था और सैयद हुसैन लखनऊ के आसपास के। तो ये मेरी, अभी भी मुंबई के कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इन दोनों क्रांतिकारियों का ओरिजिन अगर किसी ने खोजा या थोड़ी सी ही जानकारी मिली तो वो मुझे बोलते हैं कि आपने खोजा। लेकिन उसमें 6 महीने सिर्फ एक ही तथ्य खोजने में चले गए। इतिहास के साथ सर ये होता है
1: जी। तो इतनी मशक्कत करने के बाद तथ्य आपने जमा किए, इन दिनों आप किस किताब पर काम करें?
0: इन दिनों का ये है मेरी पुस्तक साहित्य और मुंबई। और एक्चुअली मुंबई के बारे में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि यहाँ साहित्य सृजन की, लेखन की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है और ये शहर प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो साहित्य और मुंबई में मैंने 5 भाषाओं पे फोकस किया है। जैसे मुंबई के साहित्य, संस्कृति और इतिहास पे लिखी गई पुस्तकें नॉन फिक्शन, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी। इसी तरह मुंबई को लेकर लिखे गए उपन्यास इन 5 भाषाओं में, उनका जिस्ट, उनका सारांश। मुंबई पे लिखी गई कविताएं इन 5 भाषाओं में, मुंबई पे लिखी गई कहानियां इन 5 भाषाओं में। मतलब इस तरह के काम हुए हैं, हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, सन 1817 में शहर की पहली शहरी जीवनी

0: उर्दू में छपी।
1: वाह वाह।
0: लेकिन वो छपी कहाँ? मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ।
1: अरे क्या
0: शहर की पहली जीवनी। हाँ
1: हाँ।
0: तो आप उसमें इस तरह की किताबों का जिक्र देखेंगे। बुक ऑफ बॉम्बे को पढ़ेंगे, मुंबई च वृत्तांत पढ़ेंगे, मुंबई च वर्णन गोविंद नारायण माडगांवकर की किताब है
1: जी।
0: और जेम्स मैकलिन की गाइड टू बॉम्बे, इस तरह की किताबों पे पढ़ेंगे। और बहुत सारी हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी की किताबों, कहानियों और कविताओं की चर्चा उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे
1: जी। तो ये भी बहुत मशक्कत का काम है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है।
0: पिछले साल जुलाई से चल रहा है उस पे शोध, और अभी 3-4 महीने और लगेंगे सर।
1: तो क्या देश के अलग अलग इलाकों में जाना पड़ता है
0: या नहीं? मुंबई, मुंबई पे काम, मुंबई की लाइब्रेरियों में काम, मतलब इस तरह के विद्वानों से मिलना जो साहित्य के बारे में जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उर्दू के विद्वानों से लाइब्रेरियों में जाना, पढ़ना, उधर से तथ्य निकालना।
1: मुंबई माफिया पर जो आपने काम किया है, ये इतिहास कितना पुराना है?
0: ये बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जब से ये मोस्टली जो इतिहास है 1950 के दशक से,
1: आजादी के बाद का,
0: आजादी के बाद के दशक का, तब छुरे और गुप्ती वाले थे, उन्होंने शुरू किया। और दूसरी बात, 60-70 के दशक में वो गोल्डन गैंग वगैरह लोग आए, और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 80 के दशक से मुंबई माफिया का प्रभुत्व तो बहुत तेजी से शुरू हुआ। हाँ, जब वो हाजी मस्तान, करीम लालदा, शुक्र नारायण बकिया, दाऊद वगैरह का तो बहुत बाद में प्रवेश हुआ। फिर मतलब धीरे धीरे आज भी है, लेकिन अब हम ये, एक जमाने में मुंबई को हम माफिया सिटी बोल सकते हैं, लेकिन अब नहीं बोल सकते। अब तो बहुत शांत और बहुत सुव्यवस्थित और बहुत समृद्ध महानगर है आमची मुंबई, जिससे मुझे बहुत गहरा प्रेम है। तो इसलिए मुंबई के माफिया पक्ष की या मुंबई के निगेटिव पक्ष को मैं बहुत सिंबॉलिक रूप से कहता हूँ, उसकी बजाय मेरी नज़र में मुंबई के और जो सर्वसमावेशी संस्कृति है, मुंबई की समृद्धि है, सबको अपना बनाने की एक जो यहाँ की मिट्टी में तासीर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।
1: मुंबई सदा से मिनी हिंदुस्तान रहा है, इसका फूड कल्चर, सिनेमा की संस्कृति, इन सब पर लिखा आपने?
0: हर तरह से, जब मैं मैंने मुंबई पे कॉलम लिखता था तो मैंने मुंबई की नाइट लाइफ पे लिखा, सिनेमा पे लिखा, फिल्म स्टूडियोज की शोकांतिका पे मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, आमची मुंबई वन में वो लिखेंगे, और खान पान की जो संस्कृति है उस पे, उन सब पे भी मेरी कोशिश रही कि हर चीज़ यहाँ पे, मुंबई का जो भाषाई परिदृश्य है, मेरी उस पे भी एक पुस्तक आई है, मुंबई और हिंदी
1: जी,
0: हिंदी
1: तो
0: को लेके।
1: मुंबई में हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, ये भाषाएं मुख्य रूप से चलती हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये एक मिनी हिंदुस्तान है। इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों के लोग यहाँ पाए जाते हैं, इस पर आपने गौर किया?
0: बिल्कुल गौर किया। मुंबई में मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा कुल 16 भाषाएं हैं जिनको मुंबई की मुख्य भाषा होने का दर्जा प्राप्त है।
1: 16 भाषाएं?
0: हाँ, 16 जो मुख्य भाषाएं हैं। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि मुझे जैसे आपने मिनी हिंदुस्तान की बात की, मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुंबई या महाराष्ट्र और मुंबई पूरे देश में इस वजह से अलग है कि मुंबई की सर्वसमावेशी संस्कृति है। दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं, यहाँ पर आपको उन धर्मों के लोग मिल जाएंगे, और उनमें एक जो भाईचारा है, जो सद्भावना है, उनके दर्शन होंगे। इसलिए मैं मुंबई को मिनी हिंदुस्तान से ज़्यादा एक लघु विश्व का दर्जा देता हूँ, जहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, हर देश के लोग मिल जाएंगे।
1: ये जो लघु विश्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे पकड़कर हम दूसरी दिशा में जरूर जा सकते हैं, जहाँ मुंबई में दूसरे देशों के लोगों की रिहाइश बहुत रही है, इजरायली, ईरानी और ब्रिटिश, अमेरिकन, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। आपका एक काम है आजादी की लड़ाई और मुंबई।
0: हाँ।
1: ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन आता है 9 अगस्त 1942, या 8 अगस्त 1942।
0: हाँ।
1: कह ले हम, जो ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। लेकिन कांग्रेस रेडियो, या मैं ये कहता हूं कि 20वीं सदी से पहले की लड़ाई क्या थी आजादी की?
0: नहीं, मुंबई का आजादी की लड़ाई में जिसका आपने जिक्र किया, अगस्त क्रांति, उसके अलावा भी है।
1: एक उषा मेहता का कांग्रेस रेडियो।
0: हाँ,
1: था
0: उषा मेहता जी।

0: और लोगों ने मतलब उसको शुरू किया था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि किस ढंग से जुड़ा है, ये जो नारे हैं क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या करो या मरो, या साइमन गो बैक, ये दो तीन महत्वपूर्ण नारे पूरे देश में गूंजे। लेकिन ये नारे गढ़े किसने? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये गढ़े मुंबई कर यूसुफ मेहर अली जी ने।
1: ओहो हो,
0: उन्होंने मतलब क्विट इंडिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो या साइमन गो बैक, महात्मा गांधी जी मतलब ने यूसुफ मेहर अली जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप इस तरह को, इस चीजों को किस तरह से कर सकते हो। तो उन्होंने ये दो तीन नारे गढ़ के दिए और पूरे देश भर में गूंजे। साइमन गो बैक के नारे वो पंजाब में भी गूंजे या पूरे देश भर में। एक और महत्वपूर्ण इस मामले में एक और है जो आजादी की लड़ाई में मुंबई के योगदान से संबंधित है। एक बहुत बड़ा कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा।
1: बाबा,
0: ये कहा जाता है कि लोकमान्य तिलक का नारा है
1: जी।
0: लोकमान्य तिलक जी ने इसको फेमस किया, इसको विख्यात किया, लेकिन ओरिजिनली इस नारे को लिखा और गढ़ा जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने, मजगांव में उनके नाम पे गार्डन है। तो मुंबई में इस तरह की कहानियां हैं। और मैंने आपको,
1: ये तो बहुत शॉकिंग है।
0: हाँ, यस, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 1857 में मेरठ में और जगहों पे क्रांति, मुंबई की क्रांति का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं आता
1: जी।
0: लेकिन वो बॉम्बे प्लाट के नाम से, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो बॉम्बे प्लाट के नाम से ये पूरी की पूरी क्रांति, जो मैंने सैयद हुसैन और मंगल गडरिया की कहानी बताई आपको, जो प्रसंग बताया वो पूरा का पूरा है। और अक्टूबर 1857 में, 10 अक्टूबर 1857 को मंगल गडरिया और सैयद हुसैन को आजाद मैदान में तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। तो मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है
1: जी। अच्छा, भारत में जो रेलवे मूवमेंट शुरू हुआ,
0: हाँ,
1: वो तो जाहिर है कि मुंबई से शुरू हुआ, और 1853 में जो मुंबई से ठाणा तक ट्रेन चलाई गई, और इस रेल मूवमेंट के बारे में कुछ बताएं।
0: हाँ, रेल मूवमेंट के बारे में, ये सपना था कि एक रेलवे होना चाहिए। और हमारे लिए गर्व की बात है कि जगन्नाथ शंकर सेठ, नाना सेठ ने इस बारे में बहुत सारा काम किया था। उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन बनाई, उसके बाद इंडियन रेलवे एसोसिएशन बनी, जिसका विलय ब्रिटिश सरकार की संस्था में हुआ, और वो 1853 में वो ट्रेन चली। लेकिन ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मुंबई CST से लेके थाना तक उस जमाने में मतलब रिहाइश जो है एकदम ये थी, और दूसरी पहाड़ियां थी छोटी छोटी, और जो इलाका है मजगांव वगैरह या जहां से रेल गुजरती थी या आगे चल के पुल बनाना, है बहुत कठिन काम था। और लोग ये कहते हैं कि ये सब ब्रिटिश सरकार की वजह से ही संभव हुआ। अगर ब्रिटिश सरकार न होती तो 1853 में जो मुंबई से थाना तक पहली ट्रेन चली, वो ट्रेन चल नहीं पाती।
1: जो रेलवे स्टेशंस थे वो तो आज जहां हैं वहां से बहुत अलग जगहों पर हुआ करते थे, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
0: तब के जमाने का जो भौगोलिक वो डेमोग्राफी थी सर, तब के जमाने की अलग थी और आज के जमाने की अलग थी।
1: तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
0: हाँ, तब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मतलब इस तरह की जगहों पे रेलवे स्टेशन होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्बल के बहुत सारे रेलवे स्टेशन जमीन से बहुत ऊपर है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट का नतीजा है
1: जी। बहुत बढ़िया, आपसे तो बातें जो हैं वो कभी ना खत्म होने वाली हैं, पर बहुत अच्छा लगा मुंबई के इतिहास पर जिस तरह से आपने काम किया है। आमची मुंबई 1, आमची मुंबई 2, मुंबई माफिया, मुंबई और हिंदी, मुंबई और साहित्य, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत दिलचस्पी जगाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। और मुझे लगता है कि जब हमने सब चीज़ों की बातें की तो चलते चलते मुंबई पर एक फिल्मी गाना भी आपकी पसंद का सुनवा लिया जाए।
0: सिर्फ यही है, जरा हटके जरा बचके, ये है मुंबई मेरी जान।
1: CID फिल्म का ये गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल OP नैयर की तर्ज है।
0: Yes.
1: सुनते हैं ये गाना।
2: ऐ दिल

0: मेरी जान।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राजेश विक्रांत जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सर।
3: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
4: ये विविध भारती है, दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
5: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा। और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है महान संगीतकार शंकर जय किशन जोड़ी के संगीतकार जय किशन की यादों से। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के महान संगीतकार जय किशन दया भाई पांचाल को, जिन्होंने शंकर के साथ मिलकर शंकर जय किशन की सबसे सफल और लोकप्रिय जोड़ी बनाई थी और भारतीय संगीत का नक्शा बदल दिया था। तो आज हम याद कर रहे हैं और आज हम सुनेंगे महान संगीतकार शंकर जय किशन के संगीत से सजे सवरे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है जंगली।
1: चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

0: कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने तो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाजों में।

0: FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। दोपहर के ठीक 12:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
5: अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है कन्यादान।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है धरती।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी हैं, सभी लिटरेचर बेस्ड है। सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

कार्यक्रम में अगली आवाज है मुकेश की, गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन है शंकर जयकिशन की, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: उसका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है आशिक।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है दीवाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
3: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
5: आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है राज हट।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है अमन।

0: पसंद हो।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने सुने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे कुछ यादगार सदाबहार गीत। आज शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की याद का दिन है। साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: दोपहर के 1 बजने का है और अब श्रोता सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा

0: रवांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान सहित कई प्रमुख नेता सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर सत्र से होगी। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के तहत सभी 309 निकायों के लिए वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि मतगणना शांतिपूर्ण और समयबद्ध तरीके से कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी के पर्व को देखते हुए मतगणना की व्यवस्था में आंशिक बदलाव किया गया है। जयपुर नगर निगम की मतगणना भवानी निकेतन कॉलेज में होगी, जबकि जिले के अन्य 18 निकायों में संबंधित निकाय मुख्यालय पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में मतगणना होगी। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतगणना के दिन विजय जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। हालांकि प्रत्याशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद अपने घर पर समर्थकों के साथ जश्न मना सकेंगे। आयोग के अनुसार भड़काऊ नारों और माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए विजय जुलूस पर रोक लगाई गई है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है, ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो। रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर मेला आज से विधिवत पूजा और ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले मेले के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही मेले को सिंगल यूज प्लास्टिक तथा डिस्पोजेबल सामग्री से मुक्त रखा जाएगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने मेलार्थियों से स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि मेले में स्वच्छ भंडारा लगाने वाली संस्थाओं को नकद राशि से पुरस्कृत भी किया जाएगा। उधर जैसलमेर जिले में आज से रामदेवरा मेले की भी शुरुआत हुई है। श्रद्धालुओं की संभावित तादाद को देखते हुए प्रशासन और रेलवे की ओर से तैयारियां की गई हैं। रेलवे की ओर से लालगढ़ से रामदेवरा के बीच 2 जोड़ी मेला स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये रेलगाड़ियां 19 से 22 सितंबर तक 4-4 ट्रिप करेंगी। दोनों रेलगाड़ियों का कोलायत और फलौदी स्टेशनों पर ठहराव होगा। प्रदेश में बीते एक हफ्ते से सुस्त पड़ा मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई तो कहीं तेज हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया। मौसम विभाग ने आज 29 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का ये दौर 15 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: बहती जाती है ये नदी कल कल गाती नदी, खेतों को पानी देती है, सबकी प्यास बुझाती है, पर्वत से ये निकलकर रास्ता अपना बनाती है, सागर तक जाने की धुन में कभी ना थकती है, चलती जाती आगे आगे, दुख सारे सबके ये भोगे, जीवन का संदेश यही है, बढ़ती जाना आगे आगे। इतनी सुंदर कविता भेजने के लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की।

गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। राजा एक सीधा सादा हाउस बोट चलाने वाला लड़का और रीता एक अमीर लड़की, दोनों के विचार अलग अलग, सादगी, खुलापन, रहन सहन का अंतर, अमीर गरीब वर्ग की सामाजिक दूरियां, टकराव, कई उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बाद होती है प्यार की जीत और राजा और रीता हो जाते हैं एक। तो हमें बताइए कि राजा और रीता की भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार कौन थे और इस गीत को कहाँ फिल्माया गया वो भी बताएं। साथियों, साथ में हमें ये भी बताइए कि नदी में, नाव में, शिकारे में, नदी किनारे में इस वक्त आपको कौन कौन से गीत और फिल्में याद आ रही हैं वो भी हमें बताएं।

साथियों आपके जवाब हमें मिल गए हैं, शशि कपूर, नंदा, आगा, शमी, कमल कपूर, और इस गीत की शूटिंग कश्मीर के श्रीनगर इलाके की खूबसूरत

सूरतवादियों और डल झील में की गई थी। आपके कुछ कमेंट्स हम और पढ़ेंगे। आज की इबारत में नदी, तालाब, शिकारी पर गीतों का संगम है जो एक बेहद खूबसूरत भावनात्मक और रुमानी रिश्ता कहलाता है। आजकल शहरों की भागदौड़ और समाज के बंधनों और तनाव से दूर नदी की लहरों में नाव पर सवार होकर एक अलग सुकून का एहसास होता है। जब आप अपने हम सफ़र के साथ कश्ती पर सवार होकर कुछ पल के लिए प्यार भरी वादियों में अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे गुजारते हैं तो रिश्तों का जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जिस रेडियो में विविध भारती चैनल ना हो उस रेडियो को हमें सुनना नहीं। विविध भारती का साथ है तो मुझे क्या कमी है, दुख में भी मिल रहा सुकून है। जी शुक्रिया। प्रेम रूपी गहरी नदी में जो शोर रूपी लहरों के साथ नैया हिचकोले खाती नजर आती है तब किनारे पर ले आता है साथी का साथ और तूफानों से गुजरकर किनारे लग ही जाता है सच्चा प्यार। हमारे सभी साथी जो प्यारे प्यारे संदेश लिखते हैं वो भी हमें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी किसी ने हमें लिखा है। अगला कमेंट है कि इस दुनिया का सबसे सबसे बड़ा सुकून सुने जाने में नहीं समझे जाने में छिपा है। जीवन में सुनना एक दवा है, आधी दुनिया का दर्द सिर्फ सुनने से मिट जाता है, अंतर शब्दों में नहीं उसके कहने के ढंग में होता है। मन उस नाविक जैसा है जो सबको किनारे तक पहुंचा देता है लेकिन खुद अपने किनारे की तलाश में रहता है, फिर भी उम्मीद बनी रहती है क्योंकि यही उम्मीद हमें हर दिन आगे बढ़ने की आशा देती है। नदी थी खामोश, किनारा भी अनजान था, नाव में बैठा कोई दिल का अरमान था, माझी ने पतवार थामी तो समझ आया हर सफर को मंजिल से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए। साथियों, हिंदी फिल्मों में नाव, बोट या कश्ती में बहुत सारे मशहूर और सुरीले गीत फिल्माए गए हैं तो आज हम ऐसे ही गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो नाव में बैठे कलाकारों पर फिल्माए गए। तो आपको ऐसे कौन से गीत पसंद हैं या फिलहाल आपको याद आ रहे हैं तो लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। और ये भी बताइए कि आपने कश्ती में बैठकर कहां कहां की सैर की। इसके अलावा आपके इलाके, शहर, गांव, कस्बे में कौन सी नदी बहती है, क्या नाम है उनके, और आप भारत में बहने वाली कितनी नदियों के नाम जानते हैं। और जब नदी, झील, नाव, कश्ती, शिकारा की बात हो तो बताएं कि कभी हाउस बोट में रहे तो कैसा लगा। और अब बात अमर प्रेम की, एक ऐसे पवित्र और अनकहे रिश्ते की कहानी जो समाज के बंधनों से परे है। दो लोगों के दरमियान एक गहरा और कोमल रिश्ता जो आत्मिक और मानसिक जुड़ाव बन जाता है। तो हमें ये बताएं इस फिल्म का कौन सा संवाद है जो अमर हो गया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के फिल्म में निभाए गए किरदारों के नाम लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के पहले हिस्से में जो बाल कलाकार का किरदार था नंदू, तो बड़ा होने पर नंदू का किरदार किस अभिनेता ने निभाया था।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए। पुष्पा और आनंद बाबू, मशहूर डायलॉग था पुष्पा आई हैड टीयर्स, और बड़ा होने पर नंदू का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम है विनोद मेहरा। बाल कलाकार थे मास्टर बॉबी, जिनका असली नाम था मासूमा, और साथी कलाकार थे बिंदु मदनपुरी, सुजीत कुमार और फरीदा जलाल।

0: amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

साथियों आपके जवाब हमने देख लिए और अभी पढ़ देते हैं। जय विजय अमिताभ बच्चन का नाम था उन दो किरदारों का, और जीनत अमान, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, इफ्तखार, मदन पुरी, हेलन, रंजीत और सुजीत कुमार उनके साथी कलाकार थे। और इस गीत की शूटिंग हुई थी वेनिस इटली की बेहद मशहूर झील ग्रैंड कैनाल में गोंडोला नाव पर। और इस गीत के बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुनाई देती है अमोरे मियो, वो इटालियन भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय गायक शरद कुमार ने आवाज़ दी है। और बैलगाड़ी चलाते हुए जो गाना गा रहे हैं वो अभिनेता है संजीव कुमार। फिल्म का नाम है अनोखी रात, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। और भारत में बहने वाली नदियों के नाम भी हमें मिल गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोमती, चंबल, गंडक और घाघरा नदियाँ।

है। अनोखी रात ओरे ताल मिले नदी के जल में, सागर में संजीव कुमार। एक साथी ने लिखा है कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की क्रूज में 2 नाइट 3 दिन का सफर किया है मैंने। एक साथी मित्र ने लिखा है जिसका नाम है जीवन धारा, उसका कोई नहीं किनारा। अगला कमेंट है कि मैं और मेरा पूरा परिवार, बेटी और दामाद 2019 में केरल गए थे, तब हम बोट हाउस पर ठहरे थे। सुबह से पूरा घूम कर आए, दोपहर का खाना, नाश्ता और रात का डिनर भी बोट पर ही ठहर कर किया। दूसरे दिन सुबह बोट से बाहर आए, बहुत अच्छा दिन गया हमारा। देखिए, जैसे जैसा मैसेज आपने लिखा था हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ दिया। साथियों, राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये एक बेहद संवेदनशील और लोकप्रिय फिल्म है नैया, जिसकी कहानी गंगा नदी किनारे बने एक छोटे से गांव की है। ये फिल्म मानवीय रिश्तों, निस्वार्थ प्रेम, समाज के बंधन और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसमें कौन से कलाकार नजर आ रहे हैं, और इस फिल्म नैया के निर्देशक का भी नाम हमें बताएं। तब तक सुनते हैं यही गीत, आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

हमारे साथियों ने जो मैसेज भेजे हैं वो ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जो 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, और सबसे छोटी नदी अलवर के पास अरवरी नदी है जो करीब 45 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। सोनू और गीता की इस प्रेम और संघर्ष की कहानी का निर्देशन किया था प्रशांत नंदा ने, जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जरीना वहाब के साथ नजर आए थे। और इस गीत में आवाज़ आपने सुनी येसुदास की, गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन, फिल्म का नाम था नैया। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मेरी जन्मभूमि सिंध नदी के किनारे बसा है मेरा गांव। एक साथी ने लिखा है कि मेरी सोच ये है कि जीवन में हम सफर ऐसा होना चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, जो एक बार अपने साथी का हाथ पकड़ ले तो ता उम्र छोड़े नहीं, अपने हम सफर का साथ मरते दम तक निभाए, यही तो सच्चा प्यार और सच्चा साथ है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे घर में कोई आ गया था तो आधा प्रोग्राम तो निकल गया। अगला कमेंट है कि मेरे शहर में गंगा है, थोड़ी दूर पर पुनपुन भी मिलती है और सोन भी मिलता है। गंगा नदी का प्रारंभ गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए दूरी तय करती हुई समुद्र में गिरती है। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें आवाज है मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है कटी पतंग। तो इस फिल्म के कलाकारों के नाम और साथ ही निर्देशक का नाम भी हमें लिखकर भेज दें।

इसके अलावा उन्होंने अपने पिता राकेश रोशन के साथ कई फिल्मों में सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। हमारे एक साथी ने हमें लिखा है कि मुझे इस वक्त फिल्म 9211 का मशहूर गीत आजा पंछी अकेला है याद आ रहा है। ये खूबसूरत गीत नाव पर सवार देव साहब और कल्पना कार्तिक पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ रात के शांत समय में फिल्माया गया था और रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस फिल्म के मुख्य पात्र थे। इन्होंने बात की है नैया फिल्म की और एक साथी ने लिखा है कि नैया का हीरो प्रशांत नंदा हमारे कटक शहर का है और नैया सुपरहिट फिल्म उड़िया फिल्म शेष श्रावण का रीमेक है। दोनों फिल्म में फ़र्क इतना ही है कि उड़िया फिल्म में दुखांत है और हीरोइन नदी में कूद कर जान दे देती है और नैया का अंत सुखांत है। एक साथी ने लिखा है अपनी तो नीति यही है अपनी तो नीति यही काम है आने जाने वालों को अपना सलाम है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। नर्मदा नदी लगभग 15 से 16 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है।

साथियों आपके जवाब हमें मिले हैं। फिल्म का नाम है कश्मीर की कली। शमी कपूर, शर्मिला टैगोर, संगीतकार ओपी नैयर और गीतकार हैं शमसुल हुदा बिहारी यानी के SH बिहारी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इस गीत को श्रीनगर जम्मू कश्मीर की मशहूर डल झील में फिल्माया गया था और निर्देशक हैं शक्ति सामंत। और अब चलते चलते आपके कुछ कमेंट्स। गंगा की लहरें में किशोर कुमार और कुमकुम नाव पर गंगा हरिद्वार में नजर आए। शमी कपूर गिर गए शर्मिला टैगोर को देखकर, बिल्कुल सही बात। और एक शिकायत भरा कमेंट भी किसी ने लिखा है, ये मेरे लिए लिखा है कि आपने कभी मेरी टिप्पणी नहीं पढ़ी, अब आपके प्रोग्राम में मैं नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे आसपास की लिखी हुई टिप्पणी को आप पढ़ती हैं।

आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

0: Azarenka will take on second seed Alina Rybakina in title clash in New York later tonight. Top seed Belarusian Sabalenka booked her place in the final with a 7-5, 6-2 victory over third seed American Jessica Pegula, while Rybakina from Kazakhstan defeated fourth seeded Coco Gauff in the semi-finals. Rybakina and Sabalenka have met 17 times, with Sabalenka leading their head-to-head record 10-7. In Grand Slam finals, the two have also faced each other at the Australian Open, with Rybakina winning in 2026 and Sabalenka claiming the title in 2023. Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and Lok Sabha Speaker Om Birla have extended their wishes to the countrymen on the occasion of Prakash Purab of Sri Guru Granth Singh Sahib today. In a social media post, Mr. Shah said that the sacred scripture encompasses invaluable teachings on service, sacrifice and equality. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS summit under India's presidency to begin shortly in New Delhi. Focus on global governance, multilateralism, trade, security and supply chains. World leaders assemble for 2-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping this evening. Prime Minister Modi holds bilaterals with his Malaysian, Vietnamese and Ethiopian counterparts. Also confers with Crown Prince of Abu Dhabi. Houthi rebels in Yemen see strategic islands tightening grip on Red Sea shipping route. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Orange alert for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, Telangana and Vidarbha for today. And in hockey, Indian women team enters Junior Asia Cup 2026 final, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China. And with that, we end the midday news.
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबू धाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। 2 दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
2: जी जागृति, देखिए।
1: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और इस सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
2: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं।

0: अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। ये नेता इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह ये भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति
1: जी, धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं, और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
1: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति शी जिनफिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
1: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगशो और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली

0: यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
2: इंडिया इनोवेशन,
3: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
2: फ्रॉम लैब टू मार्केट, फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू बध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
4: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल साधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश श्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष

0: राधाकृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है अपने हुए पराई।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाज है किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है रंगोली।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है विश्वेश्वर शर्मा ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है सन्यासी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहाँ से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नखमों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है संगम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है शैलेंद्र, धुन है शंकर जय किशन की और फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे की आवाजों में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गणेश पेठ पार्थी पुणे से, अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या, श्लोक और भैया, कोटवा नारायणपुर यूपी से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी, कर्नाटक स्टेट से चिन्ना तिरुपति, प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मनवीत, बडेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा, राजस्थान जोधपुर से अशोक बाणिया, प्रेम लता और सुमित बाणिया, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है रखवाला।

साथियों, मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है खिलौना। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, आकाश जाधव और पवन राजे जाधव, गांव हिप्पर सोगा जिला लातूर महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी शेख, बाबा सिमर और करिश्मा शेख, लाबरिया

0: भैरव इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार, कोलार रोड भोपाल से मनीषा मालवीय, उमंग शीतल, लोकेंद्र और रामबाबू मालवीय, ग्राम पजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, शहर अनिका चौक बीड़ से जनार्दन वैद्य पाठक, भाग्यश्री नारायण आरुषि, चिऊ माऊ और बिट्टू की पसंद पर सुनिए ये गीत।
1: खिलौना जान

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आर एस

बीके पुरी और वीपी रंजू, गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया, पवन पुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर लाल सोनगरा प्रेमी, गीता देवी मूलचंद हंसराज, मुकेश, सुनीता कृष्णा, सावित्री राज, प्रथम राज, अंजलि पलक, अमीशा अनुष्का, आशीष लक्षिता, जतिन मनोहर लाल सोनगरा, सरोज दायमा, अखिल दायमा एलेक्सा और मोहन लाल देवड़ा, बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, अयांश इंदिरा, निशा निहारिका, सोनू और मोनू रावल, नजीरगंज नेपाली पाड़ा जिला हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक लिंबू, रितेश लिंबू, उषा ज्योति, किरण दिरशा, रज्जाक अली और समस्त परिवार, भुट्टो मंडी जिला फतेहाबाद हरियाणा से अमर वर्मा, छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शबनम बानो, आप सभी की पसंद पर सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गोविंद मुनीस का लिखा गीत, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी दोस्त। GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा शानू और निमो। कोटदा बहादुर जिला मंदसौर MP से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। गाजियाबाद यूपी से सुषमा शर्मा, श्वेता शर्मा, अभिषेक शर्मा और एमडी शर्मा। ग्राम तंगोरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। भुट्टा बाजार रतलाम से बाबू भाई लच्छेवाला। बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, सुल्ताना असलम जावेद, उबैद और चांदनी भिश्ती। शनिवार पेठ बीड़ शहर से पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे और समर्थ कुलथे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरव, शाइना, निवान शर्मा और मैंडी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है नगीना।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव। इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना कल।

0: साशा जी।
1: हैं? अभी तो 10:30 बजे हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं।
0: क्यों ना हो नक्काल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्या ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी?
2: आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे
1: जी?
2: खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, अरे आशा जी आप तो बुरा मान गई,
3: लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं।
1: शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है।
0: अरे लिखना क्या, टंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है?
2: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबीलाल जी आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
3: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो? दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
0: नक्काल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं,
4: आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
5: अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ

0: तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा है? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
1: अब तुम्हें कौन रोके भाई? हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुंचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका दीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
1: आपका ये हिसाब कुछ अटपटा है मिस जी। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं? मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूँ आप ही की तरह। ऐसे में मैं ही क्यों? आप यहाँ कोई और भी तो उन्हें अटेंड कर सकता है।
3: नक्काल बाबू, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं।
1: बस करो हिसाबी बाबू, सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहाँ से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आ जाइए।
4: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, कहिए क्या काम है?
4: बड़े साहब जी हैं
1: है? ये कैसा सवाल है? मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहाँ दफ्तर होता है वहाँ बड़े साहब भी होते हैं।
4: मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ।
1: अरे
4: वो कब आएंगे?
1: ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं। कहिए क्या काम था?
4: जी मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है
2: जी।
4: यही कोई 20 दिन हुए होंगे।
2: आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है?
4: बेटी मैं आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी।
3: तो आप त्यागी हैं यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
4: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
3: अच्छा,
4: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
3: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बाग सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
4: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। और क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
1: इसीलिए इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो, अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे, अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
4: सर आप बुरा न माने तो एक बात को।
3: हाँ हाँ बोलो बोलो।
4: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
3: अरे श्रीमान जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
1: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
3: दफ्तर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
1: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
2: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
1: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ क्या नाम है आपका?
4: जी सत्यमूर्ति।
3: सत्यमूर्ति जी यहाँ आइए। एक बात बताइए, आप केवल एक प्रमाण पत्र चाहते हैं ना
4: जी?
3: आप आजादी के लड़ाई के एक बड़े सिपाही थे।
4: हाँ सर, यदि आप इतनी सी कृपा कर देंगे तो आज है ना, मैं आपका एहसान मानूंगा।
3: आपने अब तक किसी दलाल को क्यों नहीं पकड़ा
4: जी?
3: अरे आपको क्या, आपके बेटे को भी ऐसा प्रमाण पत्र मिल जाता।
4: छी छी छी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने काम के लिए औरों को कष्ट क्यों दूं? वैसे मैं अपने घर का सारा काम स्वयं करता हूँ, इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
3: अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई।
1: चौकन्ना, टेलीफोन उठाना।

0: ओ, कहां मर गया ये चौकन्ना।
1: पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
2: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
1: हिसाबी लाल जी।
3: सर आप सीनियर हैं।
0: ओहो ठीक है ठीक है, मैं ही उठाता।
3: नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया
0: लगता है। साहब जी आ गए,
1: आज बहुत जल्दी आ गए।
3: लगता है साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।
1: साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं।
4: श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।
0: पैसा मत आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की।
3: बारी और किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
5: नक्काल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं।
4: मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई।
6: नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्या गैर जिम्मेदाराना काम है स्टुपिड, मेरा मुंह क्या ताकते हो? जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
0: जी सर।
1: सर अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ?
4: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा।
1: जी
4: हाँ, कल आना कल।
7: सजन कब आएगा, सजन कब आएगा।
4: चौकन्ना।
5: जी सर।
4: सुनो ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ।
5: छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है।
4: क्या,
5: जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है, आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी, इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
4: हिसाबी लाल जी,
3: जी
4: आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
3: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है?
7: अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो ये है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी।
3: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
4: कर लो।
3: आशा जी आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
2: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ।
3: ये भी ठीक है।
1: नमस्कार सर, कहिए क्या काम है।
8: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
1: हाँ ठीक है ठीक है।
3: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं।
1: जी हाँ।
5: नक्काल बाबू,
1: हाँ
5: आपको आप बुला रहे हैं।
1: ठीक है आता हूँ, आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
0: नमस्कार सर।
5: नमस्कार। नक्काल बाबू
0: जी,
5: मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
0: कहिए सर।
5: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है।
0: जी।
5: 12 को पुतूर में साले की बेटी की शादी है।
0: ओ।
5: और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
0: ओ तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
5: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
0: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा।
5: वही तो मेरी समस्या है, जाऊं तो कैसे जाऊं।
0: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
5: नक्काल बाबू
0: जी,
5: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा,
0: वो
5: इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं।
0: जी
5: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते।
0: जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
5: ठीक है, सारे डेट जरा ठीक तरह से नोट कर।
0: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार किए देता हूँ। उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
3: अरे ये क्या रट रहे हो नक्काल बाबू।
0: साहब जी का

0: टूर प्रोग्राम 11, 12, 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
1: अरे वाह
2: सर, वो मेरा प्रमाण पत्र।
3: भाई बुजुर्गवार, आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। हमें प्रायोरिटी देखनी है। इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
2: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
3: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना।
1: सत्यमूर्ति जी, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं?
3: बिल्कुल,
1: आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
2: तो फिर मैं कब आऊं?
3: कल आना।
0: कल?
2: कल? कल तो इतवार है।
3: ओहो, तो सोमवार को आइए। इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।
4: नकाल बाबू।
5: जी सर।
4: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
5: जी हाँ सर, देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
4: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
5: पर सर, लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था। मैंने सोचा सर, ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
4: खैर, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। द होल प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड।
5: जी हाँ, होल प्रोग्राम क्लोज ही होना चाहिए।
4: ये कैसी बातें करते हैं नकाल बाबू
5: जी।
4: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है
5: जी,
4: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के दो मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा
5: जी,
4: और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे, हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
3: साहब जी, ये असल में सर्कुलर नहीं, सर्कुलर है।
4: खैर, अब जो भी समझो। हाँ, पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए, उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे?
5: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा। 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 काफी मंगा लूंगा।
4: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
5: सर, आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगे।
4: पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना।
5: जी हाँ साहब, हो जाएगा, आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर, तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा।
4: सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
5: ओके साहब। सर, मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
4: अरे नकाल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम
5: जी?
4: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
5: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूं।

0: सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ
0: और भी कुछ होगा।
1: और क्या,
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: भाई चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ एक रुपए में एक पैकेट।
3: क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आटप का दाल भात में मुंह से।
3: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी।
0: अच्छा तो भाई फिर दो पैकेट दो।
3: ये लीजिए।
2: चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चना लीजिए चना, एक रुपए में एक पैकेट। चना लीजिए चना।
0: उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण, जरा इस चने वाले को

0: बुलाना प्लीज।
1: ओके। ओ चने वाले दादाजी
2: जी,
1: आइए जरा।
2: और चाहिए?
3: ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना?
0: दादाजी, आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना?
3: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करते हैं? मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
4: क्या, आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
3: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।
0: किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया।
3: नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सत्यमूर्ति चने वाला हूँ। पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है।
2: चला भाई चला, तलवार गरम चला।
4: अब ये चना खाने से हमें प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी, इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध द्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
0: किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी, सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा।
4: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
0: मैं आशावादी हूँ।
4: हाँ, तुम हो ही आशा।
0: कम से कम तुम जैसी सिनिक कभी तो नहीं हो।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
3: पर साहब जी, एक समस्या है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
3: काफी ठंडी हो रही है।
0: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी
4: हिसाबी लाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
3: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा।
4: मिर्चे भी कुछ
3: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
5: नक्काल बाबू,
2: क्या
5: वो एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
2: जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल?
5: आज फुर्सत नहीं है, कल आना। कल?
0: हाँ, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
2: साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया।
0: अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ?
2: आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर।
3: सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान हैं, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं।
0: हाँ, वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।
2: उससे क्या सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे, जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिख लेंगे।
0: हाँ, एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
3: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना,

0: उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं।
1: ये ठीक नहीं होगा सर। नो नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए। बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
2: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
1: जी,
2: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
1: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
2: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
1: अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे।
2: भाई समस्या वो नहीं है, अरे सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए।
0: साहब जी, हमारे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते हैं स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर?
1: हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है, मैं उसे जानता हूँ, मैं बुला लाऊंगा।
0: बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी।
2: हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हा?

0: हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है। ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली है। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वे यहां मंच पर पधारे और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित हों।
1: साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुलाकर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबी लाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं, यही नहीं वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए और
4: गर्मागरम चना, बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए था, चना खाइए चना।
5: अजी महाशय,
4: बड़ा मजेदार चना है।
5: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ, अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही है। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
4: भाई चना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना, मसालेदार चना, चना खाइयो साहब चना।
5: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा।
6: आपको वहाँ ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
7: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं?
5: अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
7: समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
6: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
7: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र,
5: सब दिया जाएगा।
6: इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
0: सर, मेरी अर्जी
6: आज नहीं होगा, कल आना, कल।
0: साहब जी मेरा प्रमाण पत्र,
5: आप जाओ भी, कह दिया ना कल आना, कल।
6: अरे सत्यमूर्ति जी आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
7: क्या कहा, कहाँ चलूं? अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है, आपका काम नहीं होगा।
6: क्या,
7: कल आना कल।
6: अरे सत्यमूर्ति जी मेरी नौकरी चली जाएगी।
7: हाँ भाई अब जाओ भी, कह दिया ना कल आना कल।

0: कल आना कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच वी रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी एल टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉम्बे टॉकीज
1: साइलेंस लाइट साउंड कैमरा एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
3: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
2: उस
3: जहां
2: महफिल में
3: फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफे आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
4: वो जो महफिल हुई ना, उसके बाद बाबा आजमी सर ने जो बातें बोली थी वो मेरे साथ आई, मेरे साथ थी, मेरे अंदर बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या, ये आदमी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये या फिर हमको गुमराह करने का कोई नया साजिश रच रही है दुनिया की, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम मुंबई से मुंबई आते हैं गाने के लिए और somehow एक डॉक्टर बोलता है गाना नहीं गा सकती और फिर हमको लगता है अब जीवन में क्या करें, चलो एक्टिंग का ऑफर सामने से आ जाता है, एक्टिंग करने लगते हैं, फिर लगता है नहीं डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर डायरेक्शन पढ़ के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जगह से डायरेक्शन पढ़ के हम निकलते हैं, एक साल दो साल अभी डायरेक्शन में काम ही कर रहे थे कि फिर से ये बोलते हैं नहीं गाना गाना चाहिए आपको। तो मेरा लाइफ बहुत टर्मोइल में चल रहा था उस वक्त। उस महफिल उस रात जो हुआ जब जावेद अख्तर और शबाना आजमी और बड़े बड़े दिग्गज उस महफिल में बैठे थे और जब उन लोगों की नजर में अपने लिए तारीफ देखी, शब्दों में नहीं नजर में, उनके प्रेजेंस में था कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको बोलने का भी मन नहीं करता है।
3: बिल्कुल, वो महफिल ही ऐसी होती है,
4: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है। वो तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो, पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इतना मानना है कि भाई जियो और जीने दो और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है आप उसको नहीं सिखा सकते हैं।
3: तो बाबा आजमी ने आपको,
4: उन्होंने तो एक हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही हैं अपने जीवन के साथ, ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली।

0: और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए, बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे। रियाज जब शुरू किए तो पता चला गले का जो चाम है
1: वो फ्लैट हो
0: वो
1: गया,
0: जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो 2 साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो यू नो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
1: अरे बाप रे,
0: 2014 की बात है, एफटीआई के बाद। और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई, और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए, और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया, और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छूटे हुए बचपन में छूट गया गाना ना। बट वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आजमी जैसे मिले हमको, यू नो, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप, वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहां जहां हो, तुम जिस चीज के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
1: वाह।
0: और फिर हम 2 साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए। डिप्रेशन भी आया उस फेज में, क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि आप 2 जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे, तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
1: कैसे निराशा का सामना किया?
0: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपाली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा।
1: कितना लंबा चला
0: ये चला? कुछ एक 1.5 साल।
1: किसकी मदद मिली?
0: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी, ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा। पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहां पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी, मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम, और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था,
1: अपने ख्यालों में गुम थे,
0: अपने ख्यालों में, और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे, ये दूध उबल के गिर रहा है और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
1: अरे बाप रे।
0: तो वो यू नो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन, हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत फोकस्ड है, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, मतलब यू नो आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं, और हम गाते भी अच्छा है, पर क्या हम ये कर पाएंगे? मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में क्या है, तो हम स्पॉट बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं। एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है, क्योंकि वो एक ही चीज कराते, रोज रुलाते हैं, रोज किसी से यू नो वैम्प है तो बदमाश ही है, वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि वहां जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे, अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे। पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
1: बहुत बड़े सवाल थे।
0: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
1: मेरा दिमाग घूम

0: और फिर हम आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो हम अपने पापा को फोन किए और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है. तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है. बोले आओ, कितने दिन के लिए आओगी? उनका पहला ये सवाल होता था कि आ रही हो तो फिर जल्दी नहीं चली जाए. तो हम बोले पता नहीं, 6 महीना 1 साल. तो उनको लगा कुछ तो बहुत मेजर हो गया है इसके साथ,
1: ये ऐसे नहीं,
0: ये ऐसे बात नहीं करती है. और फिर हम घर पहुंचे और वो 1 साल बहुत परेशान रहे. मेरे पिताजी को ये भी था कि शादी हो जाए इसकी. उनको, माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि कंपेनियनशिप होता तो शायद ये इतनी परेशान नहीं होती. एक साथ होता है तो ढाड़स बधा रहता है आपके पास. वो भी कमी होगी, आई एम श्योर वो भी कमी थी मेरी लाइफ में. बट उससे ज्यादा कमी ये थी कि हमको क्लैरिटी नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था. किशोर कुमार के भक्त हैं हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था.
1: गजब.
0: आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड राइट ऑल्सो. और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है. और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है.
1: कैसे अपने आप को संभाला और इस 1 साल में खुद को वापस पटरी पे लाया?
0: पता नहीं वो कैसे, वो माँ बाप के पास वापस आना ही सही डिसीजन था. क्योंकि उस वक्त मुंबई में अकेले रहना मेरे लिए ठीक नहीं था. तो थैंकफुली यू नो, आज डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं. तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है.
1: यू नो, हम तो इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद,
0: की राय, मदद, हमको ये अंदाजा नहीं था. हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास, यू नो, टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर. ये सब समझ ही नहीं था हमको. बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको. तो बस हम, दैट वाज अ गुड डिसीजन.
1: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के अपने माँ बाप की गोद की तरफ लौटती है.
0: ये
1: दुनिया की सबसे प्यारी बात है.
0: सबसे प्यारी बात है. और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं. मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं. उसी उसी उसी समाज का हिस्सा है. पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी. कितनी बड़ी बात है ये.
1: बिल्कुल.
0: वो भी तो मर्द ही है ना.
1: बिल्कुल.
0: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है. थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है. पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द, जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को. आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा. आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है. और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को, मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद. बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो. तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते जाओ उड़ो. बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो. यू नो, बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर. तो हमें वो भी रोपना होता था. आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पज स्टूडियो है, जैसे ये कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था. हमें खुद का काम खुद करना है. तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो. क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे. ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे.
1: और इसलिए आप संभल गए.
0: इसलिए हम संभल गए.
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं.
0: बिल्कुल.
1: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं.

0: हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट 2017 में वापसी हुई, मुंबई में वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था। तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहां के फोक म्यूजिक को सुने। और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था। और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
0: झारखंड था,
1: यूपी है,
0: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था?
1: मध्य प्रदेश है पर बिहार नहीं है। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता। और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं। ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट उस फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है। तो बोला वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है। मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं, पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन? हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम, और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाइबो या बनी जई हो बनी के जोगिनिया हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है, या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी, दादी गाती थी, वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
0: ये बहुत बड़ा झटका था,
1: बहुत बड़ा झटका था। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है। और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक यूट्यूब चैनल है, उर्दू पोएट्री,
0: मनीष गुप्ता का
1: उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात।
0: अच्छा, ओ हो हो हो हो, वो आपने किया था?
1: जी
0: देखिए मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक है।
1: जी, तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये, और क्योंकि हम यू नो जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है और आज भी हमको
0: खूब चलता है, वो
1: खूब चलता है हमको आज भी बहुत।
0: ओरिजिनली छाया जी ने गाया है
1: जी,
0: और मजेदार बात ये है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही।
1: ओ कैसा ये सर्कल है। हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है, और हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
0: और मैंने क्या समझा पता है?
1: हाँ।
0: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने वो वीडियो बहुत देखा है।
1: अच्छा।
0: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ
1: अच्छा।
0: कुछ कविताएं पढ़ी हैं।
1: ओ हो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का

0: पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया है
1: दो कैमरास
0: लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माय ओन लैंग्वेज। भोजपुरी में अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन, उनको चाहिए थे लोकगीत,
1: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे। ऐलान किया था,
0: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
1: वो भी हमारे दोस्त।
0: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
1: क्या बात है, और वो खूब चला और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
0: बहुत चला।
1: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
0: पार्किंग लॉट
1: वो भी मजेदार है, उसमें तो अपनी पता नहीं क्या क्या गाया है।
0: हाँ उसमें तो
1: जब जो मर्जी आई है गाया है,
0: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
1: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
0: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ
1: और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
0: ये कमाल है। 2017 पार्किंग लॉट सीरीज शुरू,
1: और वो भी बहुत चली थी,
0: बहुत चला,
1: बहुत ज्यादा।
0: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, AR रहमान सुन ले हमको, बस, और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी।
1: और उन्होंने सुन ली। उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना?
0: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।
1: अच्छा,
0: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
1: उनका भी
0: जन्मदिन है,
1: ये भी इत्तेफाक है।
0: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
1: अरे बाप रे
0: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे AR रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, AR रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि AR रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे, एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
1: सारे सुने होंगे।
0: और यू नो AR रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू

0: किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे. बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माय इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था. सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा. पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है. अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
1: ये एक जरिया बना.
0: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए. आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और यार रहमान सर से हम बात कर सकते हैं. पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें. तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े, वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है. किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं.
1: वाह.
0: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा. ये जो
1: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
0: हाँ
1: कंफ्यूजन के साल.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत. क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना. अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए. आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके? अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी. लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं. अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था. और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है. और दिल के अंदर दम कोने में एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास प्लीज.
1: वाह वाह वाह.
0: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं.
1: उन्होंने कहा था
0: इंस्टाग्राम.
1: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था.
0: तो ये 3 साल पहले की बात है. मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही. पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं. पर विश्वास था कि पहुंचेगा.
1: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था.
0: ओहो कैसे बताएं हम. हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहाँ रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी. और वहां पर हमको बुलाया गया था
1: चेन्नई में, एआर रहमान स्टूडियोज.
0: एआर रहमान जी का जो स्टूडियो है पंचतन नाम है उसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका.
1: बिल्कुल.
0: और जब हम पहुंचे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में एआर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है, तुमको क्या चाहिए? तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए. तो बोला हाँ. तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और एआर रहमान का एक गाना हो सोलो.
1: एग्जैक्टली ये बोला.
0: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे.
1: वाह वाह वाह, क्या बात है.
0: जेवा पे सरस्वती बिराजती हैं भाई, बिराजती.
1: क्या बात है, क्या बात है. और ये संभव हुआ.
0: ऐश्वर्य ने बोला भी कि यू नो एआर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिडोरा पीटता है. कि अब तुम सबको बता दो कि यू नो तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी. उन लोगों की नजर में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर एआर रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए. तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे. आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा एआर रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को.
1: अरे गजब.
0: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।

0: एग्जैक्ट 6 महीने,
1: एग्जैक्ट 6 महीने।
0: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
1: जादुई है, जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
0: दीपाली, ये एक ऐसा गाना है मैं वापस आऊंगा का गाना, कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गई, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुन कर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
1: जी जरूर।

0: और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
1: बहुत बड़ी,
0: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके
1: संशय था।
0: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है, ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये वो ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं ये। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है, और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है, कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
1: वाह वाह।
0: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सबके पास,
1: बिल्कुल,
0: और इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
1: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
0: बापरे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
1: कंप्लीट एल्बम,
0: कंप्लीट एल्बम है। यस,
1: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
0: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना।
1: अच्छा।
0: जिसने गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका,
1: बिल्कुल,
0: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट।
1: उसको ये मौका दिया गया,
0: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है रहमान सर,
1: हमको तो आपकी आवाज में सुनना है।

0: जब आप ये सारे गाने एक के बाद एक गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं है, ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे, क्योंकि जब गाना सुने

0: जब रहमान साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रही थी तब रहमान नहीं थे सामने।
1: नहीं थे जी।
0: और बाद में मुलाकात का एक पूरा ब्यौरा है
1: जी,
0: हम चाहते हैं कि हम वो भी दर्ज करें, हमारे श्रोताओं तक वो बात पहुंचे
1: जी। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो एक जो छवि है उनकी, वो बहुत कम बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी बहुत थोड़े से शाय हैं, लोगों को हम जल्दी अप्रोच नहीं कर पाते हैं। शायद इसी वजह से हमको यू नो 10 साल लग गया एक गाना मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
0: क्या बात,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
0: बिल्कुल,
1: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला

0: सपने में भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो, और हम लोग चलना शुरू किए। और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटीफुल दीपाली।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके बाद हम लोग अंदर गए, और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं, और उनका काफी आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है।
1: उनके लिए एक समाधि जैसा है,
0: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर, और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद।
1: वाह वाह।
0: और उसके अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं नींद से नहीं उठे अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम ए आर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।
1: ओ हो हो हो हो।
0: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए, और हमने गाए पुराने गाने।
1: क्या बात है, क्या गाया?
0: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है।

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक लगा। ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मे भी इसलिए शायद, वेरी गुड एक्चुअली, गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है, और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है मछली के, यू नो, कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है, और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के,
0: असली रूह
1: इनमें है, तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे, वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था, और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास। उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है।
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस है, क्या बात है,
1: वो लोग अटकते हैं इसमें।
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
1: जी,
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है, और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
0: क्या बात है,
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की, हमने ऐश्वर्या की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए?
1: ऐश्वर्या से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से 2006 में

0: ऐश्वर्य ने एक रियलिटी शो जीता था, वो बिहार से पहले थे, और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्य भी खड़े थे।
1: अच्छा।
0: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्य को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्य का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली है, बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था, तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
1: मतलब बरसों बाद
0: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्य को हार्ड मांस में देखने के बाद जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्य से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्य टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्य जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे, मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्य की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्य से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्य का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्य भी रफी साहब भक्त हैं।
1: वाह वाह वाह,
0: रफी भक्त हैं।
1: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त एक किशोर भक्त।
0: हाँ, ये
1: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
0: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, घर ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
0: बहुत,
1: है ना, अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
0: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है, हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्य एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार है, और मर्दों में जो मिसिंग है, यू नो, जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं, और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहां एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
1: वाह वाह वाह,
0: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
1: वाह,
0: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिलके समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
1: बिल्कुल,
0: और पूर्णता से है,
1: बिल्कुल।
0: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम, वो जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है, और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
1: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो,
0: हाँ,

0: लॉट सीरीज याद आ
1: गया। ये पार्वती लॉट सीरीज में था,
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आरडी बर्मन
1: जी।
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई और कुछ बातचीत ऐसी होती है कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा
1: जी।
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी।
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए। इम्तियाज सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं, चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हों। वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग।
0: थैंक यू।

दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सदस्य का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सखियों को सीमा गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है सखियों आपका आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। एक बार फिर उपस्थित है हम आपके समक्ष नई चर्चा जानकारी और गीत संगीत के साथ। कितनी साझेदारी कितनी पर्दादारी, रिश्तों की ये कैसी जिम्मेदारी। कभी दिल खुलकर साथ निभाता है तो कभी राज छुपाकर भी रिश्ता बचाता है। जी हाँ सखियों, महिलाओं के जीवन में आज भी कितनी बातें ऐसी हैं जिन्हें वह समाज परिवार या परिस्थितियों के कारण पर्दे में रखती है और दूसरी ओर निर्णय लेने जिम्मेदारियां निभाने और आगे बढ़ने में उसे कितनी वास्तविक साझेदारी मिलती है। तो आइए आज चर्चा करते हैं इसी विषय पर, कितनी साझेदारी कितनी पर्दादारी। सखियों ये सवाल आज की महिला की बदलती भूमिका और समाज की बदलती सोच दोनों पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। आज महिला परिवार की हर जिम्मेदारी में सहभागी है। वह घर संभालती है, बच्चों का भविष्य बनाती है, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करती है और जरूरत पड़ने पर कठिन से कठिन निर्णय में साथ खड़ी रहती है। लेकिन जब बात उसके अपने फैसलों सपनों अधिकारों और स्वतंत्र पहचान की आती है तो क्या उसे उतनी ही साझेदारी मिलती है? सखियों कई बार महिला से अपेक्षा की जाती है कि वह परिवार की हर बात में साथ दे, लेकिन उसकी अपनी बात को समझौते के पर्दे के पीछे रख दिया जाता है। वह सबकी खुशियों का ध्यान रखती है, लेकिन उसकी खुशी उसकी पसंद उसकी असहमति को कितनी जगह मिलती है? यही इस विषय की असली पर्दादारी है। जब महिला की आवाज दिखाई तो देती है लेकिन सुनी नहीं जाती। जिम्मेदारियों में साझेदारी हो तो अधिकारों में भी बराबरी हो, महिला के हिस्से में केवल पर्दादारी क्यों, उसके सपनों में भी तो साझेदारी हो। सखियों परिवार की बात करें तो महिला अक्सर परिवार की धुरी होती है। घर की छोटी बड़ी जरूरतों से लेकर बच्चों की शिक्षा बुजुर्गों की देखभाल और रिश्तों को बनाए रखने तक में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह परिवार की खुशियों के लिए कई बार अपनी इच्छाओं और सुविधाओं का त्याग भी करती है, लेकिन जब बात बड़े फैसलों की आती है तो उसकी राय को उतना महत्व नहीं दिया जाता।

उसे पर्दा रखा जाता है। सखियों, पर्दादारी का अर्थ केवल घूंघट या शारीरिक पर्दे से नहीं है। आज पर्दादारी के कई आधुनिक रूप हैं। कभी महिला अपनी महत्वाकांक्षा को परिवार के लिए छिपा लेती है, कभी अपनी परेशानी इसलिए नहीं बताती कि घर का माहौल खराब ना हो, कभी अपनी असहमति इसलिए व्यक्त नहीं करती कि उसे जिद्दी या स्वार्थी न समझ लिया जाए। कई महिलाएं वर्षों तक अपनी प्रतिभा और सपनों को इसलिए पीछे रख देती हैं क्योंकि समाज ने उनके लिए कुछ निश्चित भूमिकाएं तय कर दी हैं। ये भी एक तरह की पर्दादारी है। अपनी पहचान, अपनी आकांक्षाओं और अपनी आवाज को पर्दे में रखना। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वे आधुनिक भी हों और परंपराओं को भी पूरी तरह से निभाएं। वे नौकरी करें, आर्थिक सहयोग दें, परिवार संभालें, बच्चों को समय दें, बुजुर्गों की देखभाल करें और सामाजिक अपेक्षाओं पर खरी उतरें। तो पुरुषों से भी परिवार की जिम्मेदारियां निभाने की अपेक्षा होनी चाहिए। साझेदारी का अर्थ ये नहीं कि महिला हर जिम्मेदारी अकेले निभाए। साझेदारी का अर्थ है जिम्मेदारियों का समान और सम्मानजनक बंटवारा। सखियों, बेटी के जन्म से ही साझेदारी की शुरुआत हो सकती है। उसे ये महसूस कराया जाए कि उसके सपने बेटे के सपनों से छोटे नहीं हैं। उसे शिक्षा, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास दिया जाए। बेटे को भी ये सिखाया जाए कि बहन के सपनों का सम्मान करना और घर के काम में हाथ बटाना उसकी भी जिम्मेदारी है। सखियों, महिलाओं को नौकरी करने की अनुमति मिल जाना ही पर्याप्त नहीं है। उसे सुरक्षित वातावरण, समान अवसर, सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने चाहिए। कब तक वह सबकी खुशियों का ध्यान रखे, कब उसके सपनों की बात होगी, कब तक जिम्मेदारियां उसके हिस्से आएंगी, कब अधिकारों में बराबर की साझेदारी होगी। जी हाँ सखियों, ये आत्ममंथन का विषय है। हमें ऐसी व्यवस्था और ऐसी मानसिकता बनानी होगी जहाँ महिला को अपनी बात कहने के लिए संघर्ष न करना पड़े, अपनी सपनों के लिए अपराध बोध न हो, अपने निर्णयों के लिए बार बार अनुमति न मांगनी पड़े। आज आवश्यकता ऐसी साझेदारी की है जिसमें महिला से केवल ये न कहा जाए कि तुम हमारे साथ हो, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया जाए उसके सपनों में साथ, उसके संघर्षों में साथ, उसके निर्णय में साथ और उसकी सफलता में भी बराबर का उत्सव हो। और असल बदलाव उस दिन होगा जब महिला की पहचान केवल किसी बेटी, पत्नी, बहू या माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में भी स्वीकार की जाएगी, जहां उसकी जिम्मेदारियों में साझेदारी हो, अधिकारों में बराबरी हो, उसके सपनों पर कोई पर्दादारी ना हो। सखियों, पर मजे हटाना होगा। साझेदारी अगर अधिकार है तो उसे निभाना होगा। महिला को सिर्फ सा नहीं चाहिए, क्योंकि आदि आबादी के बिना ये समाज अधूरा ही होगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आपके मनोरंजन का, गीत संगीत का, तो आइए सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

अभी हमारी सखियों ने सुना ये गीत, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ सखियों, आज हम एक ऐसी असाधारण महिला के बारे में जानेंगे जिन्होंने अभावों को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। ये है पद्मश्री डॉक्टर विजयलक्ष्मी माने, एक ऐसी चिकित्सक जिन्होंने कैंसर के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी और हजारों लोगों के जीवन में उम्मीद की किरण जगाई। सखियों, डॉक्टर विजयलक्ष्मी देश माने का जन्म कर्नाटक के एक साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। उनके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उनकी माँ फल और सब्जियाँ बेचकर घर चलाने में सहयोग करती थी। बचपन में विजयलक्ष्मी ने भी अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाया, लेकिन उनके मन में एक बड़ा सपना था, पढ़ाई करना और डॉक्टर बनना। परिस्थितियाँ

कठिन थीं, लेकिन उनका संकल्प उससे कहीं अधिक मजबूत था। उन्होंने मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और चिकित्सा के क्षेत्र में कदम रखा। आगे चलकर उन्होंने जनरल सर्जरी में उच्च शिक्षा प्राप्त की और कैंसर के उपचार में विशेष प्रशिक्षण लिया। मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपना जीवन कैंसर रोगियों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। सखियों, बेंगलुरु के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एंकोलॉजी में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। वे संस्थान की पहली महिला वरिष्ठ रेजिडेंट, पहली महिला फैकल्टी और बाद में पहली महिला प्रोफेसर बनी। उन्होंने सर्जिकल ऑंकोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया और विशेष रूप से स्तन कैंसर के उपचार, शोध और जागरूकता के लिए विशेष योगदान दिया। लेकिन सखियों, डॉक्टर देशमानी की महानता केवल एक सफल डॉक्टर होने में नहीं है। उन्होंने चिकित्सा को सेवा का माध्यम बनाया। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने, विशेषकर ग्रामीण और जरूरतमंद लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए लगातार काम किया। अनेक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया और अपने ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। सखियों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमियां सपनों को रोक नहीं सकती यदि इरादे मजबूत हों। अभावों में भी जिसने सपनों को पलना सिखाया, संघर्षों में भी जिसने आगे बढ़ना सिखाया, दर्द को समझा, जीवन को उम्मीद दी और सेवा को ही अपनी पहचान बनाया, ऐसी डॉक्टर विजयलक्ष्मी देशमाने केवल एक नाम नहीं बल्कि संघर्ष से सफलता, ज्ञान से सेवा और समर्पण से सम्मान तक की एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो कि हमें प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि शिक्षा का संकल्प, मेहनत का साहस और सेवा का भाव हो, तो साधारण परिस्थितियों से उठकर भी असाधारण पहचान बनाई जा सकती है। सखियों, आज विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। विश्व में प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड के महत्व के प्रति जागरूक करना है और उन्हें आपात स्थिति में तुरंत सहायता देने के लिए सक्षम बनाना है। सखियों, दुर्घटना, जलने, कटने, बेहोशी, सांप के काटने या अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने जैसी स्थिति में डॉक्टर या एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले दिया गया सही उपचार कई बार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान केवल डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आम नागरिकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को भी इसकी बुनियादी जानकारी होनी चाहिए। विद्यालयों में विशेष रूप से बच्चों और शिक्षकों को CPR, रक्तस्राव रोकने, जलने पर प्रारंभिक सहायता, चोट लगने और आपातकालीन सेवाओं से कैसे संपर्क करें जैसी बातें व्यावहारिक रूप से सिखाई जा सकती हैं। साथ ही ये भी समझाना जरूरी है कि गलत तरीके से दी गई प्राथमिक चिकित्सा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए प्रशिक्षित व्यक्ति की सलाह और उचित चिकित्सा सहायता लेना आवश्यक है। सखियों, मुसीबत की घड़ी में घबराएं नहीं, सही प्राथमिक उपचार से किसी की जिंदगी बचाएं। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, हर हाथ में जीवन की पहचान, यही है आज के दिवस का मूल मंत्र। इसी के साथ आइए सखियों, एक बार फिर लिए चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर, गीत संगीत की ओर, और सुनवा देते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो अभी हमारी सखियों ने सुना ये गीत, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आइए अब विविधा अंतर्गत बात करते हैं बारिश के दिनों में बीमारियों से बचाव के बारे में। सखियों, बारिश का मौसम सुहावना जरूर होता है, लेकिन इस दौरान मच्छरों, दूषित पानी, गंदगी और नमी के कारण कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ी सी सावधानी अपनाकर हम स्वयं और अपने परिवार को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। सिक्यो, बारिश के दिनों में साफ और उबला सुरक्षित पानी ही पिएं, खुले में रखे खाद्य पदार्थों से बचें और फल सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही इस्तेमाल करें। भोजन को ढककर रखें और बासी भोजन खाने से बचें। मच्छरों से बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि जमा पानी मच्छरों के पनपने का स्थान बन जाता है। कूलर, गमले, टायर और अन्य पात्रों में जमा पानी नियमित रूप से खाली करें। शाम के समय पूरी बांह के कपड़े पहनना और आवश्यकता अनुसार मच्छर भगाने के सुरक्षित उपाय अपनाना भी उपयोगी है। सखियों, बारिश में भीगने के बाद गीले कपड़े तुरंत बदलें और शरीर को अच्छी तरह से सुखाएं। घर और आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें तथा गंदे या जल भराव वाले स्थानों पर नंगे पैर चलने से बचें। यदि तेज बुखार, लगातार उल्टी दस्त, सांस लेने में परेशानी, अत्यधिक कमजोरी या शरीर पर असामान्य चकत्ते जैसे लक्षण दिखाई दें, तो स्वयं दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी सखी सीमा को फिर मिलने के वादे के साथ। तब तक स्वच्छ रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर, इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेज

0: है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। सर,
1: 2 लाख क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
0: अरे
2: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी आप सुन रहे थे महिला जगत कार्यक्रम FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का।

0: सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे महिला जगत कार्यक्रम। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सर इसका चैनल है। थोड़ी देर में प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम दी वाट उड़ीकता सगला किसान साथियां ने अभिलाषा पारिक की ओर सुनने ही भरी राम राम सा। और अनीता बहन आपने भी मारी ओर सु घनी घनी राम राम सा।
7: अभिलाषा जी आपने भी घना घना राम राम, और किसान वाणी सुनवा वाला सभी श्रोतावान ने अनीता की घनी घनी राम राम सा।
6: जी तो देखो अनीता बहन, आप देख रहे चा की जो बिरखा को मौसम छे वो कितनो बढ़िया लगे छे देखवा में।
7: जी
6: चारो मेर हरियाली हो जाओ छे, मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आउ छे, और मतलब अहिया लागे छे कि कोई भी समय देख लियो आप, मन प्रफुल्लित रहे छे और अपना जो मन है वो काम में निकातरी लागे छे। पर देखो यहाँ की यो बारिश को मौसम आपने लिए फायदेमंद छे, आपने अपने बढ़िया लागे छे, ई तरीका से अपनी खेती बाड़ी के ताई भी यो बारिश को पानी बहुत बढ़िया छे। पर कई स्थितियां में अहिया देखियो जाओ छे कि जो बारिश को पानी होवे छे या फिर ज्यादा बारिश हो जाओ छे वो अपनी खेत की माटी के तानी फायदेमंद की जगह नुकसानदायक भी साबित हो जाओ छे।
7: जी
6: जैसा कि आपने देखा कि बारिश खेती के तानी जितनी जरूरी छे कई बार उतनी ही बड़ी चुनौती भी बन जाओ छे। लगातार तेज बारिश और खेतों में लंबा समय तक पानी भर जावा से मिट्टी में जितना भी मौजूद पोषक तत्व छे वहां को संतुलन बिगड़ जाओ छे।
7: बिल्कुल
6: या में सबसे ज्यादा असर आपने नाइट्रोजन पर पड़े छे जो फसला की बढ़वार के तानी सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व में से एक छे।
7: बिल्कुल सही कह रहे जो आप भाई। देखो यार चौकी फसल के लिए केवल पानी, खाद और बीज ही जरूरी कौन रहे, पौधा के लिए कई ऐसा पोषक तत्व की भी जरूरत रहे जिनकी मात्रा बहुत कम रहे छे, पण आप याने सूक्ष्म पोषक तत्व खेमा चा जो की बहुत ही ज्यादा जरूरी रहे छे, या के बिना जो फसल की बढ़वार छे वा हो कौन पावे।
6: जी आपने देखा छे ना नीता बहन की कई बार अपना जो किसान साथी है बारिश के पाछे यदा अपनी फसल को निरीक्षण करे छे, वहाँ फसल की पत्तिया ने पीली देखकर तुरंत यूरिया डाल दे छे। पर अपना जो कृषि विशेषज्ञ है वाको कहबो यो छे कि हर बार पीलोपन नाइट्रोजन की कमी की वजह से खून होवे, पहले आपने असली कारण और वजह जाननी चाहिए, उनके पाछे ही आपने कोई फैसलो लेनो चाहिए।
7: और देखो साहब बहुत

0: સારા જો અશા પોષક તત્વ છે જેમાં ઝીંક છે, આયરન છે, સલ્ફર છે, બોરોન છે, યા સબકી પોષક તત્વ કી માત્રા ભી ફસલમાં બરાબર માત્રામાં રહેણી ચાહીએ. અગર એકી ભી કમી હે જાવે છે તો ઉસે હી ફસલ પર ઉકી ગુણવત્તા પર અસર પડે છે. જ્યાં કી ઝીંક કી કમી રહેવે તો પૌધા કી બઢવાર રુક જાવે છે, આયરન કી કમી રહેવે તો પત્તિયાં પીળી પડ જાવે છે, સલ્ફર કી કમી રહેવે તો દોની પત્તિયામાં પીળોપણ આ જાવે છે, पौधा की बढ़वार कमजोर हो जाव छे. यहीं ही बोरोन की कमी से फूल और फल बनवा की जो क्रिया छे वा भी प्रभावित होवे छे और नई बढ़वार जो होवे छे वा भी कमजोर रह जावे छे. फळा जड़ा को आकार असामान्य हो जावे छे. यहीं मैगजीन की कमी से पत्तियां नसा की बीच में पीलोपन या छोटा छोटा धब्बा दिखाई देव लग जावे छे. पण देखो सा, हर कमी की पहचान करवो बहुत जरूरी छे. खेत का अलग अलग हिस्सा को निरीक्षण अपने किसान भाई ने समय समय पर करती रहनी चाहिए. नई पत्तियां हो या पुरानी पत्तियां, पौधा की बढ़वार, जड़, तना, पत्तियां को हमेशा ही निरीक्षण करते रहनी चाहिए जिससे कि वहाँ की जो असली कमी छे वह पहचान में आ सके.
1: जी, और देखो बारिश के पाछे भी अपना किसान साथी कुछ अच्छा काम छे जो कर लेवे तो अपनी फसल ने नुकसान से बचा सके छे. जिया की सबसे पहले देखे की जो बारिश रुकता ही बिना जांच के यूरियो डाल वो सही तरीको कौन है.
0: जी,
1: सबसे पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जी. जैया की वाने देखना चाहिए कि खेत में पानी कितना समय तक भरेड़ो रहे छे. मिट्टी सूखबा के पहुंचे पौधा की नई बढ़वार पर नजर रखनी चाहिए. अगर पौधा सामान्य होबा लगे तो अतिरिक्त खाद देबा की जल्दबाजी न करनी चाहिए. यदि लंबा समय तक जल भराव रहे हो और नाइट्रोजन की कमी का स्पष्ट लक्षण दिखाई दे रहा हो, जद ही आपने कृषि विशेषज्ञ की सलाह से सीमित मात्रा में नाइट्रोजन देना चाहिए. और सबसे महत्वपूर्ण बात, खेत में जल निकास की व्यवस्था बेहतर रखनी चाहिए ताकि भविष्य में पानी अधिक समय तक न भरियो रहे.
0: बिल्कुल सा, देखो सा किसान भाया, बारिश के पाछे खेत की स्थिति न भी समझना चाहिए. जल निकासी करवो, फसल को निरीक्षण करवो और जरूरत के हिसाब से ही पोषण देवो जरूरी छे. जद ही अपना फसल और फसल की गुणवत्ता चोखी बनी रेवली.
1: जी साहब, तो देखो बढ़िया सी बात और बढ़िया सी जानकारी तो अपना किसान साथिया के तानी होगी, पर जब कार्यक्रम में सिलसिलो चल रहे है जानकारी को
0: जी,
1: तो साहब देखो अपना विशेषज्ञ भी अपने साथ है और एक नई जानकारी के साथ अपना किसान साथिया से मिलेला, तो काई जानकारी दे रहे सर.
0: किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाइयों को अनीता का बहुत बहुत राम राम सा. श्रोताओं, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं इस पखवाड़े के मुख्य कृषि कार्य के बारे में. इस पर जानकारी देंगे पवन कुमार बरड़िया जी, आप सहायक निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर में आप पदस्थापित हैं. पवन कुमार जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. राम राम सा.
2: राम राम.
0: पवन जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि इस पखवाड़े में कौन कौन सी फसलों का बुआई का उपयुक्त समय है और उनकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, इसके बारे में किसान भाइयों को बताइए.
2: किसान भाइयों, इस समय जो अपने 15 सितंबर से पखवाड़ा जो प्रारंभ हो रहा है उसमें अपन जो है कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं उनकी बुआई प्रारंभ कर सकते हैं
0: जी,
2: और उनकी कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे. तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन बताना चाहूंगा आपको तारामीरा की जो फसल है
0: जी,
2: उसका 15 सितंबर से जो है बुआई का उपयुक्त समय प्रारंभ हो जाता है. और तारामीरा की अगर अपन बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए किसान भाइयों, जो अभी वर्तमान में जो उन्नत किस्में हैं वो आरटीएम 1624, आरटीएम 1351, आरटीएम 314 और इसके अलावा दो उसकी उपयुक्त किस्में और हैं जो कि अधिक उत्पादन देती है, उनका है आरटीएम 2002 एवं आरटीएम 1355. यदि इन किस्मों को अपन बोते हैं तो किसान भाइयों अपन अधिक उत्पादन ले सकते हैं. इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो तारामीरा है वो बुआई के लिए अपने बीज की जो दर है वो 5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखें और बीज को बुआई से पूर्व जो है आप मैनकोजेब जो नामक दवाई आती है वो 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करके ही बोएं, जिससे कि अपने आने वाली जो फसल है उसमें कीट और रोगों से जो है अपने को थोड़ी राहत मिल सकेगी, मुक्ति मिल सकेगी. और इसके साथ साथ में किसान भाइयों, अपन जो इसकी बुआई करें तो अगर वो लाइन से लाइन बुआई करें तो बहुत ही अच्छी रहती है, उसमें उत्पादन अच्छा होता है, अपनी कृषि क्रियाएं अधिक होती है, अच्छी हो पाती है. उसके लिए आप लाइन से लाइन की दूरी जो है 30 सेंटीमीटर रखें
0: जी.
2: दूसरी अपनी जो मुख्य फसल है इस समय वो तोरिया की फसल है, जिसकी बुआई भी अपन जो है 15 सितंबर से प्रारंभ कर सकते हैं. उसके लिए भी जो है अपने उन्नत किस्में यदि अपन बात करें तो TL15, भवानी और

0: ये जो है तोरिया की उन्नत किस्में हैं। इसमें भी जो है आप बीजोपचार करके ही उसकी बुआई करें, उसमें भी डाईग्राम मेनकोजेब जो है प्रति किलोग्राम बीज की दर रखें, और साथ साथ में जो बीज की दर है वो भी 4 से 5 किलोग्राम रखें, और लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 10 सेंटीमीटर रख के बुआई करें, जिससे अपनी अच्छी क्रियाएं हो सकती हैं। साथ साथ में अपन जो है सरसों की बुआई भी जो है वो 15 सितंबर से अपन प्रारंभ कर सकते हैं
1: जी।
0: और उसकी जो उन्नत वर्तमान में जो किस्में हैं वो गिरिराज, पूसा सरसों 26, एनपीजे 112 और आरआरएन 573 जो है, इसकी बहुत ही अच्छी उन्नत किस्में हैं। और सरसों की बुआई के लिए भी आप जो है 4 से 5 किलोग्राम बीज की दर है वो आप प्रति हेक्टर के हिसाब से रखिए, और बीजों को जो है आप 2 ग्राम मैनकोजेब या 3 ग्राम थायरम नामक जो दवाई आती है उससे उपचारित करके बोइए, जिससे रोगों का जो है होता है। साथ साथ में आप चाहो तो बायो कंट्रोल भी इस पर अपन ले सकते हैं, जिसमें 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा से यदि उपचारित करें तो वह और भी उपयोगी रहेगा, और उससे जो है रोग कीट कम लगेंगे और अपना उत्पादन अच्छा हो पाएगा। तो किसान वायु इस पखवाड़े में जो मुख्य अपने फसलों बुआई का जो था वो आपको बताया, तोरिया की, सरसों की और तारामीरा की, इनकी बुआई आप प्रारंभ कर सकते हैं
1: जी। बरड़िया जी, यह तो बात हुई अपने मुख्य मुख्य फसलों की बुआई की और उनके उपयुक्त समय और उन्नत किस्मों की, पर अब बात कर लेते हैं खरीफ फसल में तिल की फसल की। बुआई की गई तिल की फसल के प्रमुख कीट और रोग और उनका नियंत्रण अपने किसान भाई कैसे करें?
0: किसान भाइयों देखो, अपन ने जिन किसान भाइयों ने खरीफ के अंदर जो है तिल की फसल बोई है उसमें इस पखवाड़े में जो है मुख्य जो रोग और कीट लग सकते हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा कि एक तो तिल के अंदर गाल मक्खी नामक जो कीट है वो प्रमुख इस समय लगने की संभावना पूरी रहती है, जिससे फलियां जो है वो लट्टों के कारण गांठ का रूप धारण कर लेती है और वो सूखने लग जाती है और उसका जो है फल उसमें बनना कम हो जाता है। इसके लिए जो है आप क्यूनोलफॉस नाम की दवाई आती है 1.5% चूर्ण वाली, वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से आप उसका भुरकाव करके और गाल मक्खी जो है उसका नियंत्रण अपन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। दूसरी अपन ये बात करें कीट की, तो फली छेदक नामक जो कीट है वो भी इस समय लगने की पूरी संभावना रहती है। इसके लिए जो है क्यूनाल्फास 25 सीसी नामक दवा जो आती है वो 1 लीटर प्रति हेक्टर की दर से जो है आप घोल बना करके और छिड़काव करें, और आवश्यकता हो तो 15 दिन के अंदर अपन दोहरा भी सकते हैं छिड़काव को। और इसमें जो प्रमुख रोग इस समय लगने की संभावना रहती है वो पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग लगता है। ये रोग जो होता है पत्तियों के अंदर जो है ऊपर की सतह पर सफेद चूर्ण जो है वो काफी दिखाई देता है, जिससे पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन जो है कम होता है। इसका नियंत्रण जो है अपन करना चाहें तो 20 किलोग्राम जो गंधक आती है वो प्रति हेक्टर से भुरखाव करके और अपन पाउडरी मिल्ड्यू नामक जो रोग है उसका नियंत्रण अच्छी प्रकार से कर सकते हैं और तिल के उत्पादन को अपन बढ़ा सकते हैं।
1: तिल में लगने वाले प्रमुख कीट और रोग नियंत्रण की अपन ने बात करी और किस तरीके से अपन इसका बचाव कर सकते हैं ये भी पवन कुमार बरड़िया जी ने अभी हमें बताया। आगे हम जानना चाहेंगे आम के मुख्य रोग और उसमें लगने वाले रोगों से किस तरीके का नियंत्रण अपने किसान भाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: जिन्होंने आम की खेती कर रखी है, आम के जो है प्लांटेशन कर रखे हैं, तो ये जो पखवाड़ा है अपना, उस पखवाड़े में आम के अंदर मुख्य रूप से जो रोग लगता है वो माथा बंधना, जिसको कि माल फॉर्मेशन भी कहते हैं, वो प्रमुख रोग इसमें लगता है। इस रोग के अंदर क्या होता है कि जो पुष्पकर्म होता है वो छोटी छोटी पत्तियों के गुच्छों के रूप में बदल जाते हैं, जिससे उसमें फल बनना जो है वो रुक जाता है और उत्पादन जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें फल नहीं बन पाते हैं, जिससे कि उत्पादन बहुत कम होता है। इसके नियंत्रण के लिए जो है आप बोर्डो मिक्सर जो है वो 200 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके और इसका छिड़काव कर दें, और साथ साथ में आप चाहें तो जो इसके थाले बने हुए होते हैं उनमें भी यदि अपन नियमित रूप से अगर निराई गुड़ाई करते रहें तो भी ये माथा बंधना का नाम जो रोग होता है वो बहुत कम लगता है और अपने जो है पुष्पकर्म है वो अच्छे बन पाते हैं, जिसमें फलों का उत्पादन अच्छा हो पाएगा।
1: जिन किसान भाइयों ने पपीते के बगीचे लगा रखे हैं उनमें अगर अभी कीट रोग का प्रकोप हो जाए तो किस तरीके से अपने किसान भाई उन रोगों का नियंत्रण कर सकते हैं?
0: किसान भाइयों जिन्होंने पपीते की खेती की हुई है, पपीते के पौधे लिए हुए अपने खेतों में, तो वो पपीते के जो पौधे हैं उनमें आप अच्छे प्रकार से निरीक्षण कर लें, क्योंकि पपीते में इस समय जो है मोजक विषाणु नामक जो रोग होता है वो मुख्य रूप से जो है पनपता है। उससे क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, गुंडी का रूप ले लेती है, और उसके सिकुड़ने से जो है उसकी

0: पौधे की वृद्धि रुक जाती है, फलों का विकास रुक जाता है और अपना उत्पादन जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये रोग के लक्षण अगर कहीं अपने को खेत में दिखे तो आप तुरंत ही जो है एक एसीफेट नाम की दवाई आती है
1: जी।
0: वो 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके तुरंत उसका जो है आप स्प्रे करवा दें, और यदि आवश्यकता हो तो दोबारा अपन 15 दिन के अंतराल पे स्प्रे फिर करवा सकते हैं। ये करने से तुरंत ही जो ये मोजेक नामक रोग जो होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, रुक जाता है, और अपने जो पपीता है वो फल अच्छा पनपता है, अच्छा विकास होता है और अपना अच्छा उत्पादन अपन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय आप जो है ये रोग जो है उसका अच्छे प्रकार से निरीक्षण करके और जैसे ही आपको लक्षण दिखे इसका तुरंत रुकाव करिए।
1: श्रोताओं, आज के कार्यक्रम किसानवाणी में हम बात कर रहे हैं इस पखवाड़े के मुख्य कृषि कार्य के बारे में। आज हमारे साथ विशेषज्ञ हैं पवन कुमार बरड़िया जी, सहायक निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर में आप पदस्थापित हैं। पवन जी, अब आपसे आगे ये जानना चाहेंगे कि जिन किसान भाइयों ने नींबू के बागीचे लगा रखे हैं, अगर उन बागीचों में कीट रोग का नियंत्रण करना हो क्या उपाय अपना सकते हैं?
0: किसान भाइयों, जिन्होंने नींबू के पौधे लगा रखे हैं, तो नींबू में क्या होता है किसान भाइयों कि अपने मुख्य रूप से जो इसमें रोग लगता है वो कैंकर नामक रोग लगता है
1: जी।
0: इस कैंकर नामक रोग से क्या होता है कि जो अपने फल होते हैं उसमें जो कोरकुनुमा जो धब्बे पड़ जाते हैं भूरे रंग के, उस धब्बों के कारण अपने को जब इसको मार्केट में अपन लेके जाते हैं बेचने के लिए, तो उन धब्बों की वजह से देखने से अपने को इसकी जो रेट है जो दर है वो बहुत कम मिलती है। तो कैंकर नामक रोग है, इसका रोग का नियंत्रण अपने को करना चाहिए जिससे कि ये रोग आगे नहीं बढ़े और अपने को मार्केट में अपन जब भी इसको बेचने के लिए जाएं तो अपने को जो अपना उत्पादन है उसका उचित दाम अपने को मिले, अच्छा उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक एक दवा आती है जिसका 200 से 250 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप स्प्रे कर दीजिए और फिर दोबारा एक बार उसका 10-12 दिन बाद में खेत का निरीक्षण कर लीजिए। यदि फिर भी खेत में दोबारा उसका प्रकोप और दिखाई देता है तो 15 दिन के बाद में एक बार इसका पुनः अपन छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि ये कैंकर रोग जो है वो प्रभाव कम हो जाएगा और अपना जो फल है उसमें धब्बे नहीं होंगे जिससे अपने को अच्छा उत्पादन मिलेगा और मार्केट में इसकी अच्छी रेट मिलेगी
1: जी। श्रोताओं, अभी इस पखवाड़े के मुख्य कृषि कार्यों के बारे में जाना और जाना कि फसलों का बुआई का समय, कौन सी उपयुक्त किस्में और क्या उनका उपयुक्त समय रह सकता है जिससे कि पैदावार भी अच्छी हो और फसल अच्छी हो। तो आगे अब पवन कुमार जी से ये जानना चाहेंगे कि इस पखवाड़े में बोई जाने वाली सब्जियों की अगर अपन बात करें तो सब्जियां और उनकी कौन सी उन्नत किस्में अपने किसान भाई ले सकते हैं जिनसे अच्छी पैदावार उनको मिल सके?
0: देखो किसान भाइयों, इस समय यदि अपन सब्जी लेना चाहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से अपन जो है मटर और जो मूली सब्जी है वो उसकी अगेती खेती जो है वो अपन प्रारंभ कर सकते हैं
1: जी।
0: अगर अपन अगेती खेती करेंगे तो अपना जो उत्पादन है वो अगेती होगा और बाजार में जो है उसकी रेट अपने को अधिक मिलने की संभावना रहती है। तो मटर के अंदर अपन बात करें कि अपन 15 सितंबर से यदि अगेती बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्नत किस्में कौन सी होगी जिससे कि अपने को अच्छा उत्पादन मिले? तो मटर की जो एक तो है अर्केल, एक है लिंकन, पंजाब 88, जवाहर मटर 3 और पूषा प्रगति नामक जो मटर की किस्में हैं ये उन्नत किस्में हैं, अगेती किस्में हैं। इनको अपन इस पखवाड़े में बुआई करके और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस मटर की बुआई के लिए अपने को बीज की जो दर है वो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखनी है और इसकी जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रख करके इसका अपन अच्छा उत्पादन ले सकते हैं जिससे कि लाइन से लाइन की बुआई करने में अपने को बाकी की जो कृषि क्रियाएं हैं वो भी अपन आसानी से कर सकें और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी अपन बात करें तो मूली जो है, मूली की भी अगेती जो किस्में हैं उसकी बुआई अपन इस समय प्रारंभ कर सकते हैं जिसमें जापानी ज्वाइट, पूषा रेशमी, पूषा देसी और अर्का निशांत नामक जो इसकी उन्नत किस्में हैं वो अगेती किस्में, इनकी अपन इस समय बुआई आसानी से कर सकते हैं। और इसकी जो बीज दर है वो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखनी उपयुक्त रहेगी और इसकी भी जो

0: लाइन से लाइन की दूरी जो है अपन 3 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर रख करके बुआई करेंगे तो अच्छा उत्पादन अपन ले सकेंगे। तो ये अगेती अपन सब्जियां उगा करके भी जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी को किसान भाई बढ़ा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सा, अगर किसान भाई समय पर और समय से पहले अगर अपने कृषि कार्य संपन्न कर लेते हैं तो फसल की पैदावार भी अच्छी होगी और उससे होने वाले मुनाफे में से भी उनको बहुत फायदा होगा। श्रोताओं, आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पवन कुमार बरड़िया, सहायक निदेशक कृषि पंत कृषि भवन जयपुर में आप पदस्थापित हैं। आप कार्यक्रम में पधारे और इतनी बेहतर तरीके से श्रोताओं को इस पखवाड़े में मुख्य होने वाले कृषि कार्यों के बारे में जानकारी दी। आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: हाँ तो अनीता बहन, देखो जानकारी तो आपने ले लिया कि की तरीका से छोटा छोटा कामन है, छोटी छोटी चीजें को ध्यान रखकर आप ई पखवाड़ा का कृषि कार्य ने निपटा सका जा।
1: जी
5: तो देखो, आप पवन कुमार जी ने धन्यवाद भी दे दिया, पर धन्यवाद आप कोरो कोरो कौन देवा अपना कार्यक्रम की रीत को ने, तो सुनवा देवा बढ़िया सुगीत।
1: बिल्कुल सर।
6: गांव वाला भाई, ओ राम राम। तो देखो, गांव चढ़ा लावणी आगा तेरे एक पटेल पटेल ने काई खरियो दे
7: काई खरियो दे

0: रविवार शाम 7 बजे सुनिए ग्राम भारती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: हाँ तो अनीता बहन, देखो गीत तो आपने सुन लिया, पर गीत सुनता सुनता अपनो जो कार्यक्रम है बीको भी टेम पूरा हो तो चले हुए। तो अपना किसान साथिया से यही कहवा कि गीत में अपना कार्यक्रम में जो भी जानकारी आपने मिली भी ने सुननो ही कोने भी ने गुणनो भी है।
4: बिल्कुल सा। और जिया की देखो मौसम बदलतो रहे छे, तो अभी जिया चेतावनी छे बारिश की भी, कई जगह हो भी रही छे, कई जगह नहीं हो रही। तो अपना किसान भाई ने मौसम का हिसाब से भी ध्यान में रखनी चाहिए और फसल को जी ध्यान रखना चाहिए, वहाँ सभी बातों को वह ध्यान रखे।
3: जी सर। तो कार्यक्रम किसान वाणी ने देवा अठे ही विराम, आज्ञा दियो अभिलाषा
4: और अनीता ने
3: चाला और करा
4: राम राम, राम, राम सा।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
5: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन ब्रिक्स देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के पहले दिन सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। अपने समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद आकाशवाणी संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, दिल्ली घोषणा पत्र में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है?
2: देखिए, दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव पर ब्रिक्स देशों ने चिंता जताई। ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने दुनिया में सैन्य खर्च में लगातार हो तेज बढ़ोतरी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके अलावा नेताओं ने कहा कि वैश्विक समस्याओं का समाधान बहुपक्षीय सहयोग के जरिए होना चाहिए, जिसमें सभी देशों के अलग अलग विचारों और हितों का जो है सम्मान किया जाना चाहिए। इसके अलावा सतत विकास, भूख और गरीबी खत्म करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। वहीं पश्चिम एशिया में के तनाव पर भी ब्रिक्स देशों ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई रूप आपराधिक अनुचित है। देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के भी कड़े शब्द निंदा की, जिसमें लगभग 20 लोगों की जान चली गई और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। जी देवेंद्र
0: जी, धन्यवाद दीपेंद्र। ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं द्वारा इस अवसर पर 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने पर आधारित सत्र के पहले दिन अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने समूह की संस्थागत नीति गति सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए एक नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया समूह की अपनी कार्यप्रणाली से शुरू होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बीच कजाकिस्तान के राष्ट्रपति और यूरेशियन आर्थिक संघ के अध्यक्ष कासिम जोमार्त तोकायेफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजुमदार ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्यकुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों की बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलेगी और बीमारियों के खतरे का समय रहते पता लगाने की क्षमता मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। मानवाधिकार संगठन ने बलूचिस्तान के मस्तुंग

0: जिले में बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उसने कहा कि इस क्षेत्र में आजीविका का साधन रहे फलों के बाग अब एक ऐसी नीति के तहत विनाश के कगार पर हैं, जो भूमि और आजीविका दोनों के लिए खतरा है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई, जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सदेश का चैनल है। आइए सुनते हैं हमारे आज के शेष रहे वैकल्प प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत, 6:30 हिंदी में और 6:45 पर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले किए जाएंगे। 7:00 आप सुन सकते हैं देशगान। 7:10 से 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में विशेष कार्यक्रम होगा सुर्खियों में, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत।

लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे शिवजी का ब्यावला। कलाकार होंगे सुगंधराम जोगी और उनके साथी। 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 समाचार अंग्रेजी में दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 9:15 से आप सुन सकते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। 11:00 हिंदी में समाचार होंगे और आज की हमारी ये सभा संपन्न होगी रात 11:05 पर।

हमारी कल की सभा में सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार होंगे। 6:05 पर भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा वंदन वार। 6:30 बजे कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं झरोखा के अंतर्गत। 6:35 पर रामचरितमानस गान आप सुन सकते हैं। संगीत सरिता का समय रहेगा सुबह 6:45।

सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे नमस्कार अलवर, 7:30 बजे आप फिल्म संगीत सुन सकते हैं, 8 बजे समाचार अंग्रेजी समाचार होंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, 8:15 पर सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम होगा, 8:30 बजे आप सुनेंगे स्वास्थ्य पत्रिका जिसमें भेंटवार्ता होगी मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, डॉक्टर किशोर दूदानी से शिव कुमार शर्मा की बातचीत।

9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले किए जाएंगे। 9:10 से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। शाम 5 बजे बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा फुलवारी और 5:30 बजे

अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे। FM बैंड 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का यह सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार ने इस गीत को गाया, आनंद बख्शी ने संगीतबद्ध किया, आरडी बर्मन ने संगीत दिया और फिल्म का नाम था कटी पतंग। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, फिल्म का नाम आराधना, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एस डी बर्मन।

आराधना फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें थीं। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीत दिया था एस टी बर्मन ने। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

मजदूर सुल्तानपुरी का लिखा गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें थीं। फिल्म का नाम था धरती कहे पुकार के। और आइए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आपकी कसम का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ब्रिक्स

0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बताया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान, करीब 73% वोट डाले गए। राज्य में बारिश का नया दौर शुरू होने से कई हिस्से तर, मौजूदा मौसमी तंत्र का असर 16 सितंबर तक बने रहने की संभावना और गणेश महोत्सव को लेकर प्रदेश में उल्लास और भक्ति का माहौल, बाबा रामदेव मेला कल से शुरू होगा। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। सम्मेलन के समापन भाषण में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ये घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। उन्होंने कहा कि इन संकल्पों को परिणामों में बदलना सबकी साझा जिम्मेदारी है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि बदलती दुनिया को पुराने संस्थानों से निर्देशित नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण में सुधार पर जोर दिया। श्री मोदी ने ये भी कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और उन्हें नियंत्रित करने वाले नियमों में ग्लोबल साउथ देशों की समान भागीदारी होनी चाहिए। इससे पहले समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर आधारित सत्र के उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के जरिए सभी पहलुओं और परिणामों की निगरानी करने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने भारत की अगुवाई वाले इस वर्ष के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की भारत की अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता प्रथम के दृष्टिकोण पर आधारित है। श्री मोदी ने कहा कि लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में भारत ने ब्रिक्स सहयोग को आम जनता से सीधे जोड़ने पर बल दिया है।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सभी ब्रिक्स देशों के नेताओं का भारत की धरती पर आगमन का स्वागत किया है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत सहयोग, संवाद और साझा प्रगति का नया वैश्विक अध्याय लिख रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नई दिल्ली में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस समारोह का आयोजन देश भर में 23 केंद्रों पर किया गया। समारोह में श्री मेघवाल ने नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 1700 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को समाप्त किया गया है। इससे इज ऑफ लिविंग के साथ ही विश्वास आधारित शासन को नई गति मिली है।
2: 1725 ऐसे पुराने कानून जिसकी अब आवश्यकता नहीं, उनको हमने समाप्त किया। 40,000 से अधिक जो कंप्लायंस बर्डन है उनको कम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने का काम किया। इसी रिफॉर्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ

0: प्रोविजंस एक्ट 2026 के माध्यम से 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस में बदलाव किया गया, 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, छोटी प्रोसीजरल गलती के लिए अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना।
1: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नगरीय निकाय चुनावों में राज्य में अब तक का सबसे अधिक मतदान दर्ज होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने आज राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह से मुलाकात कर बधाई दी और इस उपलब्धि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों में दो चरणों में हुए मतदान में लगभग 73% वोट डाले गए। सबसे अधिक 91.59% वोटिंग बालोतरा जिले के धोरी मन्ना की नगर पालिका में हुई। हनुमानगढ़ जिले की गोलूवाला नगर पालिका में भी 90% मतदान हुआ। इस बीच मतगणना प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आयोग की ओर से मतगणना को लेकर विभिन्न स्तरों की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 14 सितंबर को होने वाली वोटों की गिनती के लिए पर्यवेक्षकों और गणना सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रूस में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव में ब्यावर की ऐश्वर्या यादव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। येकातेरिनबर्ग में ये महोत्सव 17 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान ऐश्वर्या वाद विवाद तथा विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगी। उनकी इस उपलब्धि से ब्यावर शहर में खुशी का माहौल है। जिला कलेक्टर कमलराम मीणा ने भी इसके लिए ऐश्वर्या और उसके परिवार को बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से राज्य में बारिश का नया दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग की ओर से आज भी कई जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कल भी अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बाड़मेर, बालोतरा, भरतपुर और भीलवाड़ा सहित 29 जिलों में गरज के साथ बारिश का येलो अलर्ट बताया गया है। इस बीच जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, पाली, बारां, बीकानेर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में आंधी बरसात की गतिविधियां दर्ज की जा रही हैं। कोटपुतली बहरोड जिले के विराटनगर और पावटा में आज कुछ देर मूसलाधार बारिश हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र, सिरोही जिले के पिंडवाड़ा और आसपास के इलाकों तथा सलुम्बर में ठंडी हवाओं के साथ थोड़ी देर रिमझिम बारिश का दौर चला। बरसात और बादलों की आवाजाही के कारण तापमान में आई गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। नए मौसम तंत्र का असर 16 सितंबर तक बने रहने की संभावना है। पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों यानी जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बरसात के भी आसार हैं। बारिश के इस दौर को देखते हुए खरीफ फसलों को भीगने से बचाने के लिए किसानों को समुचित उपाय करने की सलाह दी गई है। साथ ही कीटनाशकों और अन्य रसायनों का छिड़काव भी बारिश की संभावना को ध्यान में रखकर करने का परामर्श दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक डीग और धौलपुर दो ही जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी बरसा है। सवाईमाधोपुर, अजमेर, अलवर और बीकानेर सहित 23 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। वहीं जयपुर और उदयपुर सहित 15 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। सबसे कम बरसात पाली जिले में हुई है। प्रदेश में किडनी रोगियों को आसान और निशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मरीजों को समय पर और नजदीकी अस्पतालों में ही डायलिसिस सुविधा मिले, इसके लिए सरकारी संस्थानों के साथ ही निजी जन सहभागिता और CSR के सहयोग से इन सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। इस पर और ब्यौरा न्यूज डेस्क से।
2: प्रदेश में अब तक 16,000 से ज्यादा मरीजों को निशुल्क डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इन मरीजों को 1,17,000 से ज्यादा डायलिसिस सेशन दिए जा चुके हैं। इस उपचार सुविधा की कुल लागत 21 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के 35 जिले

0: चिकित्सालयों में 149 डायलिसिस मशीनें संचालित की जा रही हैं। डायलिसिस की जरूरत वाले रोगियों को दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए जिला अस्पतालों के साथ ही अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी इस सुविधा का विस्तार किया जा रहा है। इस महीने 78 और चिकित्सा संस्थानों में डायलिसिस सेवा शुरू होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर।
1: गणेश चतुर्थी पर्व और गणेश महोत्सव को लेकर प्रदेश में उल्लास और भक्ति का माहौल बना हुआ है। गणेश मंदिरों में सजावट और रोशनी की जा रही है। कहीं मूर्तिकार प्रतिमाओं के श्रृंगार को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो कहीं लोग अपनी पसंद के बप्पा की प्रतिमा तलाशते नजर आ रहे हैं। वहीं विभिन्न स्थानों पर पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाएं सजाई जा रही हैं। गणपति बप्पा के आगमन के लिए पांडाल लगाए जा रहे हैं और हलवाइयों द्वारा मोदक तथा लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व 14 सितंबर को मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर के प्रसिद्ध मोती डोंगरी गणेश मंदिर में इस उपलक्ष्य में मोदकों की आकर्षक झांकी सजाई जा रही है। इस बीच सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले का आज ध्वजारोहण के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस लक्खी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा और सलुम्बर के सराड़ा मंदिर सहित कई स्थानों पर गणेश महोत्सव रखे गए हैं। लोक देवता बाबा रामदेव का मेला कल से शुरू होगा। जैसलमेर जिले में बाबा की समाधि स्थल रामदेवरा पर मंगला आरती के साथ ही मेले की शुरुआत होगी। मेले में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की आवक को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त के साथ ही प्रभावी निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। उधर बाड़मेर जिले के शिव क्षेत्र के रामदेरिया गाँव में अवतार धाम पर कल से भादवा मेला लगेगा। उधर पाली के घूमटे स्थित बाबा रामदेव का भादवा मेला कल से भरेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बताया। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में अब तक का सबसे अधिक मतदान, करीब 73% वोट डाले गए। राज्य में बारिश का नया दौर शुरू होने से कई हिस्से तर, मौजूदा मौसमी तंत्र का असर 16 सितंबर तक बने रहने की संभावना। और गणेश महोत्सव को लेकर प्रदेश में उल्लास और भक्ति का माहौल, बाबा रामदेव का मेला कल से शुरू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से दौसा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख समाचार एकांश ने तैयार किया है। जिले में बीते दिनों नगरीय निकाय चुनाव के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण, पेयजल और अन्य गतिविधियां आयोजित हुई। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जिले के 5 नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान हुआ। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए विधिक जागरूकता कार्यक्रम, वन महोत्सव और खेल आयोजन हुए। प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के तहत दौसा, लवाण, रामगढ़ पचवारा, लालसोट और मंडावरी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कल मतदान हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा और पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने दौसा नगर परिषद क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वाहनों और व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वॉलंटियर्स ने भी मतदान में सहयोग दिया। इससे पहले मतदान दलों के प्रशिक्षण और रवानगी की व्यवस्था के साथ स्ट्रांग रूम और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया गया। पहले चरण के चुनाव के तहत 9 सितंबर को मतदान हुआ। दोनों चरणों में मतदान पूरा होने के बाद अब 14 सितंबर को मतगणना होगी। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय मेडिकल कॉलेज दौसा में विकसित भारत विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र वर्मा और उप प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र यादव ने विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र के समग्र विकास को लेकर विद्यार्थियों से चर्चा की। इस दौरान ऑनलाइन क्विज में भी विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिले के विभिन्न स्कूलों में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजडे कार्यक्रम के तहत न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को विधिक जानकारी दी। छात्र छात्राओं को अजनबी से

0: प्रावधान विषय पर बाल सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया। न्यायिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी जानकारी दी। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल खेड़ला खुर्द में जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया। महोत्सव एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हुआ। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजेश पायलट स्टेडियम में विभिन्न खेल गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये आयोजन स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ। महवा में आयोजित सीबीएसई कबड्डी गर्ल्स स्टेट क्लस्टर टूर्नामेंट में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कबड्डी खिलाड़ियों और रेफरी से परिचय प्राप्त किया और टॉस करवाकर मैच देखा। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के विकास पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का आह्वान किया। राज्यपाल ने जिलाधिकारियों की बैठक भी ली। उन्होंने जिले में टीबी, नशा मुक्ति और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने टीबी मरीजों को समय पर पूरा उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही नशा मुक्ति के लिए प्रभावी कार्रवाई करने और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात प्रबंधन में सुधार के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अस्पतालों में पीएम राहत पोर्टल सक्रिय करने के निर्देश भी दिए गए। जिला स्तरीय अंतर विभागीय समन्वय समिति और सतत विकास लक्ष्य मॉनिटरिंग समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। बैठक में हर जन्म और मृत्यु का पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पहचान पोर्टल पर लंबित ई साइन का भी शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। पेयजल योजनाओं के हस्तांतरण के अवसर पर जल अर्पण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर ने पानी के विवेकपूर्ण उपयोग की लोगों को शपथ दिलाई। इस दौरान चित्तौड़गढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल जुड़कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन सुना गया। सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तांतरित की गई। दौसा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। ब्रिक्स सदस्य देश सगला री एक राय नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का न्यू ब्रिक्स री सदारत न जन केंद्रित बताई। प्रदेश माए भिया नगरीय निकाय चुनाव माए हाल ताई रसबू बत्ता करीब 73% वोट पड़िया। राज्य माए बारिश रो नुवो दौर शुरू भियो। 16 सितंबर ताई बिरखा चालती रहवन रा आसार। और प्रदेश माए गणेश महोत्सव रो उमाव और भक्ति रो माहौल। लोक देवता बाबा रामदेव रो मेलो ही काल शुरू भेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 रा पहला ही दिन आज ब्रिक्स सदस्य देश एक राय नई दिल्ली घोषणा पत्र अपना लीनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उ घोषणा पत्र अपनावन रो प्रस्ताव पेश कीनो हो। सम्मेलन रा समापन भाषण माए प्रधानमंत्री मोदी कहो के उ घोषणा पत्र सदस्य देशा रा भेड़ा संकल्प री साफ दिशा बतावे है। वे कहो के आ संकल्पा ने नतीजा माए बदलन री सगला री भेड़ी जिम्मेदारी है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: नई दिल्ली रा भारत मंडपम माए राखी जिया ब्रिक्स शिखर सम्मेलन माए प्रधानमंत्री मोदी कहो के बदलती दुनिया ने जूना संस्थानों नी चलाई जा सके है। वे नुमाइंदगी जवाबदेही और नियम बनावन रा काम माए

0: सुधार माथे जोर दीनो। श्री मोदी कहो के आवता बगतरी प्रौद्योगिकी और वन काबू करण वाला नियमा माए ग्लोबल साउथ देशारी बराबर भागीदारी फेवनी चाहिए। इनो पहली सत्र रा उद्घाटन भाषण माए श्री मोदी ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र रो प्रस्ताव पेश कीनो। व कहो के ओ तंत्र तीन पखा रा ट्रोइका रे जरिए सगली पहला और नतीजा री निगरानी कर सकेला। प्रधानमंत्री भारत री अगुवाई वाला ई ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने ऐतिहासिक उपलब्धि बतायो। व कहो के ब्रिक्स समूह री भारत री सदारत जन केंद्रित और मानवता प्रथम रा नजरिया माथे आधारित है। श्री मोदी कहो के लचीलापन नवाचार सहयोग और थरता माथे भारत रो सबो बतो ध्यान है।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही है। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला।
0: केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज नई दिल्ली में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI रा दीक्षांत समारोह में शामिल भया। देश भर में 23 ठोड़ा राखी ज्या इ कार्यक्रम में नुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इंस्टीट्यूट री सदस्यता रा सर्टिफिकेट दिया चिया। इ मौके मेघवाल कहो के लाडला कुछ बरसा में 1,700 जूना और बेकार कानून खत्म करी चिया, जिनो ईज ऑफ लिविंग सागे विश्वास आधारित राज ने नुवी रफ्तार मिली है।
2: 1,725 ऐसे पुराने कानून जिसकी अब आवश्यकता नहीं, उनको हमने समाप्त किया। 40,000 से अधिक जो कंप्लायंस बर्डन है उनको कम किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस देने का काम किया। इसी रिफॉर्म जर्नी को आगे बढ़ाते हुए जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस एक्ट 2026 के माध्यम से 79 सेंट्रल एक्ट्स की 784 प्रोविजंस में बदलाव किया गया। 717 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया गया। हमारा अप्रोच स्पष्ट है, छोटी प्रोसीजरल गलती के लिए अननेसेसरी क्रिमिनलाइजेशन नहीं बल्कि प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन और वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देना।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास हाल ही माए भिया नगरीय निकाय चुनाव माए प्रदेश माए हाल ताई रा सबों बत्ता मतदान प्रतिशत माथे खुशी जताई है। वे आज राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह सागे मुलाकात कर आ उपलब्धि हासिल करण सारू वाने बधाई देता थका राज्य निर्वाचन आयोग री कोशिशा री सराहना कीनी। प्रदेश रा 309 नगरीय निकाया माए दो दौर माए पड़िया वोटर आतेत करीब 73% मतदाता मत दिनो। सबू बत्ता 91.59% वोट बालोतरा जिला री धोरीमन्ना नगर पालिका माए पड़िया। हनुमानगढ़ जिला री गोलूवाला नगर पालिका माए 90% मतदान भियो। इन बीच वोटा री गिनती रो काम आसानियों और साफ कोई सागा करावन सारू सगली जरूरी तैयारियां करी जा रही है। वोटारी 14 सितंबर नवेवन वाली गिनती सारू पर्यवेक्षकां और गणना सहायकां ने सिखावन दी जा रही है। रूस माए चल रहा अंतरराष्ट्रीय युवा महोत्सव माए ब्यावर री ऐश्वर्या यादव भारत री ओर शामिल भे रही है। येकातेरिनबर्ग माए फेरियो अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 17 सितंबर तक चलेला। इस दौरान ऐश्वर्या वाद विवाद समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा सागे शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम माए भारत री नुमाइंदगी करेला। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। राज्य में बिरखारो नुवो दौर शुरू फेंक्यो है। मौसम विभाग आज कई जिला में बरसात रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। काली अजमेर अलवर बांसवाड़ा डूंगरपुर बाड़मेर बालोतरा भरतपुर और भीलवाड़ा समेत 29 जिला

0: गरज सागे बारिश रा आसार है। इबीचे जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, पाली, बारां, बीकानेर, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ समेत कई जिला में जोरदार बायरो बाजन सागे में बरसियो। कोटपुतली बहरोड जिला रा विराटनगर और पावटा माए आज कुछ देर ताई झमाझम में व्यो, जदके सलूम्बर माए सीड़ो बायरो बाजन सागे थोड़ी देर ताई फुहारा पड़ी। बरसात फेवनु उमस हूं साता मिली है। बिरखारो दौर 16 सितंबर ताई चाल बारा आसार है। जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग माए हल्की मझला दर्जा री बिरखा वह सके है। उदयपुर संभाग और आरएसआर रा हल्का माए कठे जोरदार बरसात री संभावना है। बिरखा ने ध्यान राखता थका किसाना ने साखा ने भीजमाऊ बचावन सारू जरूरी जतन करन री राय दी रीची है। जल संसाधन विभाग रे मुझे प्रदेश माए हाल ताई डीग और धौलपुर जिला माए सामान्य बत्तों में बरसियो है। सवाई माधोपुर, अजमेर, अलवर और बीकानेर समेत 23 जिला माए सामान्य, जदके जयपुर और उदयपुर समेत 15 जिला माए सामान्य कम पानी बरसियो है। हाल ताई सब कम बरसात पाली जिला माए भी है। प्रदेश माए किडनी री बीमारियां रा मरीजा ने इलाज रा आसान और मुफ्त सुविधा मुहैया करावन सारू लगातार कोशिशां करी जा रही है। मरीजा ने टेम सर नजदीकी अस्पताल माए डायलिसिस सुविधो मुहैया करावन सारू सरकारी संस्थाना सागे जनतारी भागीदारियों इनु जुड़ी सेवावां ने मजबूत बनाई जा रही है। और ब्यूरो समाचार डेस्क।
1: प्रदेश माए हाल ताई 16,000 बत्ता मरीजा ने मुफ्त डायलिसिस करावन रू सुविधा मुहैया कराई जो है, जाने 1,17,000 बत्ता डायलिसिस सेशन दिया जा चुकिया है। इलाज रा ई सुविधा माथे कुल खर्च 21 करोड़ रुपया पत्तो है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम रा तहत प्रदेश रा 35 जिला अस्पताल माए 149 डायलिसिस मशीना काम कर रही है। डायलिसिस री जरूरत वाला मरीजा ने दूर जावन बचावन सारू जिला अस्पताल सागे दूजा चिकित्सा संस्थाना माई ओ सुबितो मुहैया कराया जा रियो है। ई महीना 78 और चिकित्सा संस्थाना माए डायलिसिस सेवा सरू वेवनरी उम्मीद है। समाचार कक्षो सालेहा गाजी।
0: प्रदेश माए गणेश चौथ हर गणेश महोत्सव रो उमाव निजरावन लाग्यो है। इन ध्यान राखता थका गणेश जी रा मिंद्रा माए सोहनी सजावट रोशनी करी जा रही है। न्यारी न्यारी ठोड़ा गणेश जी रे पर्यावरण अनुकूल मूर्तियां सजाई जा रही है। गणपति बापा रा स्वागत सारू पंडाल सजाया जा रहा है और हलवाई मोदक बनावन माए लाग्योड़ा है। गणेश चौथ 14 सितंबर न मनाई जावेला। ई मौके राजधानी जयपुर रा नामी मोती डूंगरी गणेश मंदिर माए मोदक री सोहनी झांकी सजाई जा रही है। इबीचे सवाई माधोपुर रो रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेलो आज झंडो फहरावन री रीत सागे शुरू भयो। 3 दिन रा ई मेला माए मोटी तादाद माए जात्रु पुगरिया है। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा और सलूम्बर जिला रा सरड़ा मिंदर समेत कई ठोड़ा गणेश महोत्सव राखी चिया है। दूजकानी लोक देवता बाबा रामदेव रो मेलो काल शुरू भेला। जैसलमेर जिला माए बाबा री समाधि री ठौड़ रामदेव रा माए मंगला आरती सागे मेला री शुरुआत भेला। मेला माए आखा देश आर्या जात्रुआ री मोटी तादाद न ध्यान राखता थका प्रशासन और पुलिस जरूरी तैयारियां कीनी है। वठे हिफाजत रा पुख्ता बंदोबस्त सागे असरदार निगरानी सारू सीसीटीवी कैमरा ही लगाई चिया है। बाड़मेर जिला माए शिव हलकारा रामदेरिया गांव माए अवतार धाम माए काल भादवो मेलो शुरू भेला। पाली जिला रा घूमटी माए बाबा रामदेव रो भादवो मेलो ही काल भरेला। आखिर माए खास समाचार एक और फेरु सुन ली रहो। ब्रिक्स सदस्य देश सगला ने एक राय नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनायो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का न्यू ब्रिक्स री सदारत न जन केंद्रित बताई। प्रदेश माए फिया नगरीय निकाय चुनाव माए हाल ताई रा सब बत्ता करीब 73% वोट पड़िया। राज्य माए बारिश रो नुओ दौर शुरू भयो। और प्रदेश माए गणेश महोत्सव रो उमाव और भक्ति रो माहौल। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सदस्य का चैनल है। लीजिए सुनिए देश गान।

सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का

0: संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉक्टर पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे, घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना, इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूं।
1: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद।
1: जी अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
3: जी बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन या जो घोषणा पत्र है
1: जी,
3: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा
1: जी।
3: क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे। परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस दो दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत

0: इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये तीन देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें तीन देश जो इसमें भागीदार हैं। ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहां पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहां पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजंस है, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था,
1: जी
0: जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा
1: जी
0: था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं, जो कि पीपल सेंट्रिक हो,
1: बिल्कुल
0: जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो। तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए,
1: जी
0: निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में,
1: जी
0: तो ये सभी चीजें इसमें हैं। मैं समझता हूं जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है, जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
1: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने अम्बेसडर सज्जन हार को सुना, उन्होंने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं, उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
2: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में, और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई, और जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही। तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टैचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है, जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे

0: कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो एसडीजी इश्यूज हैं
1: जी
0: उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं,
1: जी
0: लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना आए इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म
1: जी
0: की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहां पर कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो पहले एक हिचक होती थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
1: आपने एक बहुत एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अभी समूह परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
1: अम्बेसडर सज्जन हार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे अंदर हमारे भीतर काफी अंतर है, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
3: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं।
1: जी
3: ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं। और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं, तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे भाई, इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शन इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न हैं, हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूं परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ। तो जो उन्होंने कहा है जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की,
1: बिल्कुल
3: 40% है इसकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं, रूस पहले था, अभी यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया सभी मिलकर आ गए हैं। तो अगर ये इसमें इतना ज्यादा आर्थिक शक्ति है परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है, जो ये गुट हालांकि इसमें इतनी विविधता है परंतु फिर भी

0: ये एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं, और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटरी रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया। पहले सुनते हैं क्या कहा।
2: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है, तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है वो भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इसमें?
3: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप दो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है, और मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देशों पर पड़ रहा है, जो सबसे जो विकासशील देश है उन पर पड़ रहा है, और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशंस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे, और बड़ी शक्तियां ये बात बिल्कुल सही है नहीं सुन रही हैं। तो कहां उसमें भारत ने जो लीड ली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है, और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स के एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात भारत की, एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है, और भारत उसको अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, और दूसरा भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल साउथ के देशों में। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी में, नेगोशिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की, या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये प्रयास भारत का लगातार जारी है, और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में

0: भारत भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
1: बात अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि यूएनएससी है यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत जरूरी है। और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।
2: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने

0: लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: जी अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है और ये कितना जरूरी हो गया है?
2: जी बहुत जरूरी हो गया है। देखिए मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं, ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे यूएन जनरल असेंबली में, तब उसके तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मल्टीलैटरलिज्म हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है, एकदम इतने उसका सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव था जो वहां पर पीस सिक्योरिटी शांति लेकर आए, सुरक्षा लेकर आए पूरे विश्व में। अब हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है 4.5 साल से, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाया है। और अभी ये ईरान का और अमेरिका का युद्ध भी कितने 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, परंतु उसमें भी कुछ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल कोई योगदान नहीं दे पाया है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है वो उसका कार्यशीलता बढ़ेगी, वो अच्छा अपना काम कर पाएगा अगर वो आज की रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। वही बात है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि वहां पर भी जो लीडरशिप है, वोटिंग राइट्स है, वो आजकल की इकोनॉमीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ब्रिक्स में देखा जाए, चीन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व में
1: जी,
2: भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भी हमारे इसमें बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, परंतु उनको अपना जितना उनका योगदान है उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। भारत करीब 18% योगदान करता है ग्लोबल ग्रोथ में, परंतु यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो उनको
1: आवाज नहीं मिल रही, जितना योगदान है उतनी आवाज नहीं मिल रही,
2: उतनी आवाज नहीं मिल रही और उसको जरूर मिलना चाहिए।
1: जी एक और बात जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही वो थी कि समुद्री यात्री यानी कि सी फेरर्स की सुरक्षा को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, सुनते हैं क्या कहा।
0: सी फेरर्स का वैश्विक व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है, किंतु अक्सर मुश्किल समय में उन्हें सहारे की कमी महसूस होती है। मेरा प्रस्ताव है कि क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं, इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री ने जो सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बनाने की जो एक पेशकश की है, अगर हम मौजूदा परिपेक्ष में देखें, खासकर जो पश्चिम एशिया में हो रहा है और उससे पहले भी उसके साथ साथ और न सिर्फ पश्चिम एशिया में पर और भी हिस्सों में जो भारत विश्व के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, सप्लाई चेन में जो हम आजकल सप्लाई चेन में डिस्रप्शंस हम देख रहे हैं, उन सब के मद्देनजर ये जो प्रपोजल, ये जो एक प्रधानमंत्री ने बात कही है एक सपोर्ट नेटवर्क बनाने के लिए, ये कितनी अहम है?
3: ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट एक पहल प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ समय से वैश्विक हालात जिस तरह के बने हुए हैं, उसमें सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट जो हो रहा है वो ग्लोबल ट्रेड पर हो रहा है, ग्लोबल कॉमर्स पर हो रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं, और जो एक जिस तरह से वैश्विक ढांचा बना हुआ था व्यापार का, उस पर निरंतर प्रहार हो रहा है। और ये बात

0: भारत लगातार कहता रहा है कि जो बेसिक ग्लोबल गुड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होता है तो उसका प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ता है, गरीब देशों पर पड़ता है, ग्लोबल कॉमर्स तरह से डिस्टर्ब होता है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट सारी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। पूरी वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है वो उथल पुथल है, इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, जीडीपी नीचे जा रहे हैं, तो कहीं पर इसको सुदृढ़ करना, इसमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो आपकी मदद कर पाए कठिन से कठिन समय में, जब दो देश युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन कहीं पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वॉर फाइटिंग के वो प्रोटेक्ट रहे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है और इसको इसका समर्थन जरूर काफी हद तक न सिर्फ ब्रिक्स के देश बल्कि ब्रिक्स से आगे जो देश हैं, ब्रिक्स के बाहर जो देश हैं वो भी करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर है, लोगों की लाइवलीहुड पर है, लोगों की इकोनॉमी इकोनॉमिक ग्रोथ पर है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल भारत ने प्रस्तुत किया है अपनी प्रेसिडेंसी के लिए, और अगर ये आत्मसात होता है, अगर ये ऑपरेशनलाइज होता है ग्राउंड पर, तो इसका बेनिफिट ग्लोबल होगा, न सिर्फ भारत को होगा बल्कि दुनिया में होगा।
1: जी, अब बात करते हैं कि आज जो पूरा दिन की गतिविधियां हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से भी बातचीत की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत पहुंचे हैं, आज आए हैं, और उनके साथ आज कुछ देर पहले आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, और इन दोनों नेताओं के बीच में ये 3 साल में तीसरी मुलाकात थी। पहले सुनते हैं कि इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: आपका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ब्रिक्स समिट में आपके सकारात्मक वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान चीन से मिले समर्थन और सहयोग के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमें द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। एक बार फिर भारत में आपका हार्दिक स्वागत है।
1: अम्बेसडर सज्जन हार, दुनिया की दो सबसे अधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्थाएं भारत और चीन, दोनों नेताओं के बीच में ये जो बैठक हुई है ये कितनी महत्वपूर्ण है?
3: जी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जैसे आपने बताया, जो ये पिछले 3 साल में तीसरी बैठक है, जो हमारे बीच के जो संबंध थे उनमें बहुत एक शॉक उसको मिला था, बड़ी खटास आ गई थी जब गलवान इंसिडेंट हुआ था 2020 में, जून 2020 में, और वो 5 साल तक चलता रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहे, और जो हमारे संबंध थे, राजनीतिक संबंध, राजनयिक संबंध, उनको बहुत ही निचले स्तर पर हम ले आए थे, और बहुत से ऐसे अंकुश भी लगा दिए थे भारत ने जो चीन के साथ संबंधों पर। परंतु इसकी फिर से शुरुआत हुई अक्टूबर 2024 में, जब कजान में रूस में ब्रिक्स की समिट के साइडलाइंस पर मुलाकात हुई, और तब नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन शुरू हुआ, और फिर पिछले साल त्यानजिन में मुलाकात हुई, इस बारी बिश्केक में भी 10 दिन पहले मुलाकात हुई, परंतु कोई स्ट्रक्चर्ड बायलैटरल मीटिंग नहीं हुई, परंतु आज ये मुलाकात हुई। और मैं समझता हूं जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया था 2024 में अक्टूबर में, जिससे कि हमने वीजा देने शुरू कर दिए थे, फैसिलिटेट कर दिए थे, जिससे कि हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू कर दी थी, कैलाश मानसरोवर यात्रा हमने फिर से प्रारंभ कर दी थी, जो चीन से इन्वेस्टमेंट आती है उसमें थोड़ी सी हमने ढील दे दी थी, उसके जो प्रोविजंस थे उनको थोड़ा लिबरल बना दिया था, लूजन कर दिया था। तो ये मैं समझता हूँ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, ये शुरुआत हुई थी 2024 में, और आज की मुलाकात में देखता हूं, देखिए मैं नहीं समझता जो कोई बहुत ही इतना बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं, हाँ, तो उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा, थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ

0: एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शंस किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में, 2020 में तो गलवान हुआ। तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए और वहां पर शांति रहनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
1: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ, जो इस वक्त मौजूद है भारत मंडपम में। आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: जी अनुभा
1: जी, आनंद मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
2: अनुभा, ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। सत्र के आज समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभव,
1: आनंद इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश है मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए?
3: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलेटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलें और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी बता रहे थे, कल भी वार्ताएं होंगी, लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है, वो मुझे लगता है अपने आप में भारत का भी एक जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं भारत की, उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी। और आगे जैसे जैसे ये संबंध और गहरे होंगे, हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
1: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्ष पंत, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में विशेष कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

गुलजार का लिखा गीत था, हेमंत कुमार ने संगीत दिया, किशोर कुमार की आवाज़ और फिल्म का नाम था खामोशी। और आइए सुने कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

फिल्म मिली का ये गीत था, आवाज़ किशोर कुमार की, गीतकार थे योगेश और संगीत था एस टी बर्मन का। और आइए सुने कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

राजेंद्र किशन के बोल थे, हेमंत कुमार की धुन थी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें। फिल्म का नाम था मिस मैरी। और आइए सुनवाते हैं आपको ये अगला गीत।

गुलजार ने गीत को लिखा, खय्याम ने संगीत दिया। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म का नाम था थोड़ी सी बेवफाई। ये गीत अभी आपने सुना और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं ममता फिल्म का एक गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सदेश का चैनल है। लोक संगीत में आइए आज आपको सुनवाते हैं शिवजी का व्यावला। कलाकार हैं सुगन राम जोगी और उनके साथी। शिवजी का व्यावला सुनने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
5: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
5: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
5: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: हेलो। हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
7: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
6: अरे वो गांव के पास

0: में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे शिवजी का ब्यावला। कलाकार थे सुगन राम जोगी और उनके साथी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरिना सबालिंका का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ

0: ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकता समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
0: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
0: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
0: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
0: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
1: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
0: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर

0: I would like to say that the outcome document.
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
0: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
2: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
3: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था।

0: हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आरेना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आरेना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आरेना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वर्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में, सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल लिखे थे यंगवीर रोहताश गेकसिनिया ने और संगीत ऋत्विक कलशिलकर शाइन और राज मावेर का था। इसी के साथ ही कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: यह है विविध भारती।
2: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: पट्टा मन।
1: हिंदी फिल्म संगीत के समुद्र में गोता लगाएं तो हाथ आते हैं कई अनमोल मोती। आज हम कुछ ऐसे बेमिसाल चमकीले मोती लेकर आए हैं जिन्हें तराशा है संगीतकार शंकर जयकिशन ने। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन हैं हमारे आज के फनकार।

शंकर जय किशन की जोड़ी में से किसी एक को भी अलग करना मुमकिन नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से उन रचनाओं को सुनेंगे जिन्हें संगीतकार जय किशन ने तैयार किया था। हालांकि शंकर अगर आसमान है तो जय किशन है।

ये गीत संगीतकार जयकिशन को बड़ा ही प्रिय था। दरअसल जयकिशन का पूरा नाम था जयकिशन दया भाई पांचाल। गुजरात के बाजदा नामक गांव में जयकिशन जी का जन्म हुआ था 4 नवंबर सन 1932 में। जयकिशन जैसे संगीत रचने के लिए ही बने थे। उनके एक भाई बलवंत गांव के एक भजन मंडली में हारमोनियम बजाया करते थे। बस यहीं से जयकिशन की रुचि संगीत में जागी। वे उल्टे हाथ से हारमोनियम बजाने लगे। आरंभिक संगीत शिक्षा गांव के ही संगीत विशारद वाड़ी लाल जी से हुई। फिर प्रेम शंकर नायक से उन्होंने संगीत की तालीम ली।

0: माता।
1: नियति का खेद देखिए कि कुछ ही समय के बाद जय किशन पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए। यहीं उनकी मुलाकात शंकर से हुई और बाद में वही उनके अभिन्न सहयोगी बने और फिर मशहूर हुई ये जोड़ी शंकर जय किशन के नाम से। शंकर उन दिनों संगीत का जोड़ी हुस्न लाल भगत राम के यहाँ तबला वादक के रूप में काम करते।

रोजी रोटी की तलाश में अपने संबंधियों की मदद से जयकिशन मुंबई आए और शिवडी स्थित एक कपड़ा मिल में नौकरी करने लगे। लेकिन दिल में एक बेचैनी थी, एक जुनून था जो उन्हें हारमोनियम की धुन की ओर खींचता था।

रोचक बात ये है कि राज कपूर ने जब आरके प्रोडक्शंस की स्थापना की और फिल्म आग बनाई तो उसके संगीतकार बने राम गांगुली। संगीतकार शंकर जयकिशन राम गांगुली के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे, लेकिन इसके बाद जब फिल्म बरसात आई तो यहाँ से शुरू हुई शंकर जयकिशन की सुरीली स्वर यात्रा।

फिल्म बरसात के बाद तो एक पूरी टीम ही बन गई। गीतकार बने हसरत जयपुरी और शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन और कंपनी राज कपूर की आरके प्रोडक्शंस। आइए जरा इस टीम की कुछ रचनाओं पर गौर करें।

सुनने वालों को ये सचमुच एक पहेली की तरह लगता होगा कि शंकर जयकिशन की जोड़ी में से कौन से गाने शंकर ने बनाए और कौन से कंपोज किए जयकिशन ने। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार आपकी ये रेडियो सखी अब आपको कुछ ऐसे गीत सुनवा रही है जिनकी धुन संगीतकार जयकिशन ने तैयार की थी।

जयकिशन रूमानी तबीयत के शख्स थे, इसलिए नर्म नाजुक धुने बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। अब फिल्म लव मैरिज के इस गीत की नजाकत देखिए।

जय किशन ने प्रेम विवाह किया था। वे बड़े संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। मोहब्बत भरे तरानों को तैयार करने में उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। धुने बनाने के साथ साथ जय किशन शायरी और कविता के भी बड़े शौक

शौकीन थे। शायद इसीलिए शायरी और कविता की संवेदनशीलता और नाजुकी उनके मोहब्बत भरे नगमों की धुनों में खूब खूब झलकती है।

फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत, जिसे जय किशन ने अहमदाबाद की कई खिड़कियों वाली ऐतिहासिक इमारत को देखकर हसरत जयपुरी से लिखने को कहा था।

दरअसल अपनी संगीत यात्रा में शंकर जयकिशन एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें अलग करके देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन गीतों की रचना प्रक्रिया की दृष्टि से ये जानना बड़ा रोचक लगता है कि कौन से गीत कंपोज किए शंकर ने और कौन से जयकिशन ने।

दोस्तों, संगीतकार जयकिशन एक सीधे सादे इंसान थे, लेकिन थे बड़े मेहनती। वे खाने के बड़े शौकीन थे, न सिर्फ खाने के शौकीन बल्कि वो खुद बहुत अच्छा खाना भी पकाते थे। दोस्तों के साथ बैठकें जमाना उन्हें बड़ा पसंद था। जयकिशन अलग सुबह उठकर अपने गानों की धुनें बनाने में लग जाते थे।

दोस्तों, संगीतकार शंकर जयकिशन हिंदी फिल्म संगीत संसार के सुर समुद्र थे। उनका काम सचमुच बड़ा व्यापक रहा है। अपने करियर में सैकड़ों फिल्मों में संगीत देने के बावजूद शंकर जयकिशन की जोड़ी ने सबसे हिट नगमे दिए हैं। यहाँ तक कि एक दौर में उनकी लगभग हर फिल्म के नगमे गली गली में गूंजा करते थे और लोगों के दिलों पर राज करते थे।

सन 1971 में 39 वर्ष की छोटी आयु में संगीतकार जय किशन ने इस संसार को अलविदा कह दिया। कल खेल में हम हो

संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के जयकिशन को हमने याद किया आज के फनकार में। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस प्रोग्राम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्रेम दिल की वो दास्ता है जिसे शब्दों से ज्यादा खामोशियां कहती हैं। कभी किसी की एक झलक दिल में उजाला भर देती है, तो कभी उसी चेहरे के इंतजार में पूरी रात चांदनी बनकर ठहर जाती है। मोहब्बत में इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है। महफिल में महबूब के आने से बहारें भी फूल बरसाने लग जाती हैं।

चिल्लाहट पे लगता है शायद वो आए हैं। हर हवा के झोंके में उनकी खुशबू तलाशते हैं और हर धड़कन से बस यही सवाल करते हैं, काश वो आए और इस इंतजार को मोहब्बत का मुकम्मल एहसास दे जाएं।

दिल की इसी अनकही कहानी में कुछ ख्वाब हैं, कुछ अरमान हैं, कुछ बीती हुई शामें हैं और एक ऐसे मिलन की आस है जो शायद इस रात की खामोशी में कहीं दूर से

अंतराल के बाद हम और आप साथ साथ कार्यक्रम चल रहा है छाया गीत। खुद पर यकीन हो चला है कि ये दिल तुमसे ही मोहब्बत करने लगा है। कोई कह दे जाके किसी से भी तो क्या फर्क पड़ता है, बाहर ही तुम फिर भी आएंगी। जब तुम्हारा साथ मिल गया तो मंजिलें खुद ब खुद करीब आएंगी। रंग प्यार का ऐसा छाया कि चांद को देखकर ये दिल कुछ इस तरह से शर्माया।

जिस चाहत के लिए कभी रातें लंबी लगती थी, आज वही चाहत एक खूबसूरत सुबह बनकर जिंदगी में ठहर गई है। जहां कोई दूर था तो ख्वाब था, पास आया तो हकीकत बना, और मिलकर ऐसा लगा जैसे दिल को आखिरकार अपना हमसफर मिल गया।

कितनी अजीब है ना इश्क मोहब्बत प्रेम की गलियां। मिलन अभी हुआ नहीं मगर दिल ने उसे न जाने कितनी बार जी लिया है, जैसे कोई भटकी हुई राह अपनी मंजिल पाले, जैसे बरसों से प्यासा दिल उसके मिलने पर झूम कर संग संग गीत गुनगुना ले, जैसे किसी अधूरे गीत को अचानक उसका आखिरी सुर मिल जाए। बस लगता है वक्त यहीं थम जाए और इन मोहब्बत भरे दिलों को यूं ही धड़कने दें।

रात अपने पूरी शबाब पर है, हमसे कह रही है तुम सबको सोना नहीं है क्या? चलिए छाया गीत के सफर से विदा लेते हैं और प्यार भरे नमस्कार के साथ मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत, शुभ रात्रि। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जरा नजरों से कह

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से दिल्ली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गद्दी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है अलग अलग।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सदेश का चैनल है। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों